भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके आज अयोध्या पधार रहे हैं। अयोध्या के सारे निवासी एकटक भगवान राम की राह देख रहे हैं।

वो अखियां जो सोई नहीं जब से भगवान राम अयोध्या छोड़ के वनवास को गए, आज उन्हीं आंखों को विश्राम मिलेगा। भरत के हृदय में बड़ा आनंद है कि आज भैया आएंगे, दर्शन देंगे, इस नगरी को फिर से अपनाएंगे और इस सिंहासन का कार्यभार फिर से संभाल लेंगे। मां कौशल्या के हृदय में उमंगे उठ रही हैं कि आज मेरे राम आ रहे हैं। बस यही भाव इस भजन में है, आइए इस भजन का आनंद लेते हैं।

पीछे अवध के नर और नारी, रास्ता देखे महल अटारी, पूछे सिंहासन के खड़ाऊं, पूछे कौशल

अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आराधना चैनल। आइए अब सुनते हैं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

अर्जनम भवीजानाम अर्जनम सुखजम पदाम अर्जनम यमदूतानाम राम रामेति गर्जनम श्री सीताराम नाम महाराज की। संत बड़े परमार्थी वेस्तरे अवधूत राम नाम की गर्जना भाग्य अवधूत श्री सीताराम नाम महाराज की। श्री राम लला भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम जय, श्री राम जय, जय श्री राम जै।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

ये आकाशवाणी का आराधना चैनल है। आइए सुनते हैं आकाशवाणी श्रीनगर के बालटाल और पहलगाम से अमरनाथ यात्रा पर विशेष प्रसारण।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का विशेष यात्रा प्रसारण, और आप सभी श्रोताओं को आज के इस प्रसारण में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं फैजान कुरैशी, और ये यात्रा प्रसारण आप FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, वेव्स OTT प्लेटफॉर्म, न्यूज़ ऑन AIR ऐप के आराधना चैनल तथा DTH के माध्यम से देश और विदेश तक प्रसारित किया जा रहा है। श्रोताओं, इस विशेष प्रसारण के दौरान हम आप तक श्री अमरनाथ जी यात्रा

से जुड़ी हर महत्वपूर्ण और प्रामाणिक जानकारी पहुंचाएंगे। यात्रा मार्ग की वर्तमान स्थिति, मौसम के हाल के साथ साथ प्रशासन द्वारा जारी ताज़ा सूचनाओं से भी हम आपको लगातार अवगत करते रहेंगे। और इस दौरान हमारे संवाददाता पल पल की ताज़ा जानकारी लेकर आपके साथ जुड़े रहेंगे। लेकिन कुछ वक्त के बाद हम अपने संवाददाताओं से बात करेंगे, वो यात्रा के हवाले से हमें महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण जानकारी देंगे कि इस वक्त जो मुख्तलिफ जगहों पर यात्री मौजूद है उनके लिए क्या क्या इंतजाम है, और यात्रा के हवाले से क्या सूरत हाल है, और ख़ास तौर पर जो मौसम की जानकारी हासिल करना जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, और हमारे संवाददाता उससे भी हमें इन्फॉर्म करेंगे, आगाह करेंगे, लेकिन कुछ वक्फे के बाद।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का विशेष यात्रा प्रसारण, जो FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, वेव्स OTT प्लेटफॉर्म, न्यूज़ ऑन AIR ऐप के आराधना चैनल तथा DTH के माध्यम से देश और विदेश तक प्रसारित किया जा रहा है। आज सामिन, हम बात करेंगे अब अपने संवाददाता से और ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर यात्रा के हवाले से नया अपडेट क्या है और मौसम की सूरत हाल के हवाले से भी हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी मोहम्मद तस्किन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
1: जी शुक्रिया।
0: जी तस्किन साहब, हमें ये बता दीजिएगा कि इस वक्त यात्रा के हवाले से क्या खास अपडेट है आपके पास, ख़ास तौर पर हाईवे और मौसम की सूरत हाल से हमारे जो श्रोता है उनको आगाह कर दीजिए।
1: जी हाईवे पर मौसम खराब बना हुआ है। कल रात को थोड़ा सा 5-6 घंटे बारिश रुक गई थी, थम गई थी और बादल भी हट गए थे, लेकिन फिर रात को करीबन 12:30-1 बजे से फिर बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ है, जो अभी जारी है। हल्की हल्की बारिशें इसमें भी हो रही है और जिसकी वजह से जो कल नेशनल हाईवे को खुलने के इम्कान पैदा हुए थे और गाड़ियों को छोड़ा भी गया था ट्रायल बेसिस पर, लेकिन फिर कल तो एक तो करीबन कल 10-10:30 बजे एक और लैंडस्लाइड उधमपुर के देवल इलाके में आ गई, उसकी वजह से फिर हाईवे बंद हो गए। और आज सुबह जब उठे तो मजीद जो स्लाइडिंग की इतलात है, जो शूटिंग स्टोन्स और मार्ड स्लाइड्स हैं दोनों डिस्ट्रिक्ट में, यानी उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में भी और रामबन डिस्ट्रिक्ट में भी, और SSP ट्रैफिक जो राजा आदिल हमीद है उन्होंने इस बारे में जो इतला दी है उसके मुताबिक कि हाईवे जो है फ्रेश लैंड स्लाइड्स की वजह से मजीद कई मुकाम पर बंद कर दी गई है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की जो बहाली अभी मुमकिन नहीं हो सकी। अलबत्ता जो रेस्टोरेशन का वर्क है वो मुख्य मुकाम पर जारी है और अगर मौसम ने साथ दिया और अगर मौसम थमा रहा तो उम्मीद है कि आज दोपहर तक हाईवे को थ्रू किया जाएगा। इस दौरान जो श्री अमरनाथ यात्रा का जो सस्पेंशन है, जो सस्पेंड की गई है 19 तारीख से, वो लगातार सस्पेंड है और आज 5वां दिन हो गया, 6ठा दिन हो गया कि यात्रा मुसलसल बंद है। और इस दौरान जो यात्री यहाँ रामबन डिस्ट्रिक्ट में रोके गए हैं, जैसे यात्रा निवास चंद्रपुर

श्रोताओं, एक बार फिर से आपका यात्रा के इस विशेष प्रसारण में आपका खैर मकदम। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का ये विशेष प्रसारण। यात्रा के दौरान अपना यात्रा परमिट और पहचान पत्र हमेशा अपने साथ रखें, क्योंकि मौसम में अचानक बदलाव हो सकता है, इसलिए रेनकोट और गर्म कपड़े साथ रखना न भूलें। और आप सभी से निवेदन है कि यात्रा के दौरान प्रशासन द्वारा जारी सभी निर्देशों का पालन करें, क्योंकि सुरक्षित यात्रा ही सफल यात्रा है। अब सुन रहे हैं आकाशवाणी का विशेष यात्रा प्रसारण, जो FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, न्यूज ऑन AIR ऐप की आराधना चैनल तथा DTH के माध्यम से देश और विदेश तक प्रसारित किया जा रहा है। श्रोताओं, अब समय हो चला है समाचार का, आइए समाचार सुनते हैं।

0: साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक की घटनाएं रोकने के लिए नया कानून लाने का वादा किया। आज मंत्रिमंडल की बैठक में कड़े प्रावधान लाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने पेपर लीक मामलों के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में अनशन समाप्त किया। भारत ने 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्षमता वाला अपना पहला एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी, शिक्षा तथा खेल के क्षेत्रों में 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का स्कॉटलैंड के ग्लासगो में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले 2.5 महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए।
1: पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से

0: अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विहित कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। सरकार ने अभी कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिए गए हैं।
0: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे, विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी, कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
1: वहीं दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षाओं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है।
2: दिल्ली की राउस एवेन्यू अदालत में लोक परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक से जुड़े मामलों की जल्द सुनवाई के लिए एक विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय की अधिसूचना के अनुसार यह अदालत लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 और उससे जुड़े अन्य मामलों की सुनवाई करेगी। यह अधिसूचना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परीक्षा में पेपर लीक के मामलों में शामिल लोगों को शीघ्र और कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए देश भर में फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा के कुछ घंटों बात जारी की गई। रोहन, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में केंद्रीय मंत्रियों जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में 26 दिनों से जारी अनशन समाप्त कर दिया। एक रिपोर्ट।
3: इस दौरान सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो और लेह लद्दाख के शीर्ष निकाय के वरिष्ठ नेता भी अस्पताल में मौजूद थे। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसद भी वहां पहुंचे और पत्र लिखकर अनशन समाप्त करने का आग्रह किया था। श्री वांगचुक ने कहा कि उन्होंने विभिन्न शर्तों पर लंबी बातचीत के बाद अनशन समाप्त किया है। उन्होंने सभी से किसी भी प्रकार की हिंसा न होने देने के लिए सतर्क रहने का आग्रह किया। श्री वांगचुक 28 जून से शिक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक मामले में जवाबदेही की मांग को लेकर अनशन पर थे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मृगनयनी पांडे।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने श्री वांगचुक से अपील की है कि वे डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करें और जल्द से जल्द अपने सामान्य वजन को वापस प्राप्त करें। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद करने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, झंडेवालान, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, ITO, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
0: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा और खेलों के क्षेत्र में सहयोग के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों पर कल बुखारेस्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया के राष्ट्रपति निकुशोर डांड के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद हस्ताक्षर किए गए। एक रिपोर्ट।
2: इस वक्तव्य में राष्ट्रपति

0: ने कहा कि भारत और रोमानिया के बीच 7 दशकों से ज्यादा से गहरा और मजबूत संबंध रहा है, जो आपसी भरोसे, सम्मान और लोगों के बीच मजबूत रिश्तों पर टिकी है। उन्होंने कहा कि भारत और रोमानिया विनिर्माण, फार्मास्यूटिकल, स्वास्थ्य सेवा, नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, कृषि उत्पादन, उर्वरक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, डिजिटल, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। बुकारेस्ट रोमानिया से शुभाश्री महापात्रा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बुखारेस्ट के विक्टोरिया पैलेस में रोमानिया के प्रधानमंत्री इली बोलोजान के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे रोमानिया के राष्ट्रपति के साथ भारत रोमानिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सचिवों की नियुक्ति की है। वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। नरेश पाल गंगवार नए उच्च शिक्षा सचिव होंगे। टीके अनिल कुमार स्कूली शिक्षा और साक्षरता सचिव होंगे। भारत ने 350 किलोग्राम के थ्रस्ट श्रेणी का अपना पहला स्वदेशी डिस्पोजेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान GTRE ने विकसित किया है। एक रिपोर्ट।
2: रक्षा मंत्रालय ने कहा कि DRDO के डिजाइन पर आधारित इस जटिल प्रणाली की डिलीवरी भारतीय रक्षा उद्योग की बढ़ती तकनीकी क्षमताओं को दर्शाती है। ये वर्षों की सटीक इंजीनियरिंग, उन्नत विनिर्माण और भारत के वैज्ञानिक और औद्योगिक समुदाय के बीच घनिष्ठ साझेदारी का परिणाम है। मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि जेट इंजन प्रौद्योगिकी को विश्व के सबसे परिष्कृत इंजीनियरिंग विषयों में से एक माना जाता है। इस इंजन को बुधवार को आजाद इंजीनियरिंग द्वारा सफलतापूर्वक विकसित किया गया और GTRI को सौंपा गया। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: DRDO ने आज ओडिशा तट के निकट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली कुशा मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO और संबंधित पक्षों को बधाई दी है। ओडिशा के पवित्र तटीय शहर पुरी में आज विश्व प्रसिद्ध बहुधा यात्रा का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की श्री गुंडिचा मंदिर से श्री जगन्नाथ मंदिर तक की वापसी यात्रा कराई जाएगी।
3: पुरी के पवित्र शहर गहरी भक्ति और आध्यात्मिक उत्साह से भर गया है। लाखों भक्त भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की घर वापसी की बाहुड़ा यात्रा को देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। पारंपरिक वाद्य यंत्र की ताल के बीच देवताओं के पहंडी जुलूस से समारोह पूर्वक ले जाया जाएगा और उनके शानदार रथों पर विराजमान किया जाएगा। यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का रथ मौसी मंदिर में रुकेगा, जहाँ भगवान को पोड़ो पीठा का भोग लगाया जाएगा। प्रकाश आकाशवाणी समाचार।
1: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तराखंड में भी मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। इस बीच गुजरात में पिछले 48 घंटों से लगातार हो रही वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ स्कॉटलैंड के ग्लासगो में एक भव्य और रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ हुआ। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग ले रही हैं। ध्वजवाहक मीराबाई चानू और औपचारिक मशालवाहक लवलीना बोरगोहेन के नेतृत्व में भारतीय दल ने तिरंगे लहराते हुए स्पोर्ट्स एरेना में प्रवेश किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: और अब आज के समाचार।

0: पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद विशाल। पेपर लीक की गंभीर समस्या से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा आज के अधिकांश अखबारों के मुख पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री के शब्दों को दिया है पेपर लीक पर कड़ा कानून बनेगा, आज कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा मसौदा। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के अनशन समाप्त करने को भी अखबारों ने सुर्खी बनाया है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है वांगचुक ने आधी रात तोड़ा अनशन, केंद्रीय मंत्रियों ने जूस पिलाकर तोड़वाया अनशन। वहीं आंदोलनकारी छात्रों और सरकार के बीच बातचीत पर नवभारत टाइम्स का कहना है वेन्यू पर अटकी सरकार से वार्ता। अमर उजाला की सुर्खी है यूपीएससी की तरह एनटीए परीक्षाएं होंगी फुल प्रूफ, शुरू हुए बड़े बदलाव, गड़बड़ी पर नपेंगे अधिकारी, ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम की भी होगी समीक्षा। परीक्षा सुधार जरूरी शीर्षक से हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ छात्रों का आंदोलन अपनी जगह है, लेकिन परीक्षा सुधार के लिए जो कदम उठाए गए हैं उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा को साकार करने की जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ परीक्षा तंत्र से जुड़े लोगों की भी होनी चाहिए। 2 साल के अंतर की शर्त लगाकर नहीं रोक सकते मातृत्व अवकाश, सरकारी कर्मियों के मातृत्व अवकाश पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की टिप्पणी दैनिक जागरण में है। न्यायालय ने कहा पहले और दूसरे बच्चे के बीच 2 वर्ष का अंतर होने की शर्त लगाकर मातृत्व अवकाश देने से नहीं किया जा सकता इनकार। आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने वालों को नतीजे भुगतने होंगे, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर का ये बयान जनसत्ता में है। फिलीपींस के मनीला में 33वीं आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठक में विदेश मंत्री ने कहा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग सुरक्षित और निर्बाध से खुले रहने चाहिए।
0: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक की घटनाएं रोकने के लिए नया कानून लाने का वादा किया। आज मंत्रिमंडल की बैठक में कड़े प्रावधान लाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने पेपर लीक मामलों के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में अनशन समाप्त किया। भारत ने 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्षमता वाला अपना पहला एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी, शिक्षा तथा खेल के क्षेत्रों में 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का स्कॉटलैंड के ग्लासगो में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुभारंभ। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम वीसी प्रमोद। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्रॉमिसेस न्यू लॉ टू टैकल पेपर लीक्स। टुडेज कैबिनेट मीटिंग टू कम आउट विद स्ट्रिक्टर मेजर्स टू डील विद द इश्यू। Delhi High Court sets up special fast-track court for paper leak cases after PM Modi's announcement. Activist Sonam Wangchuk ends his hunger strike in presence of Union Ministers JP Nadda and Jitendra Singh. India develops its first expendable turbojet engine of 350 kilograms thrust class. India and Romania sign 3 agreements in the fields of science and technology, education and sports. And 23rd Commonwealth Games begin in Glasgow, Scotland with spectacular and colourful opening ceremony. Prime Minister Narendra Modi has said that he directed the departments to prepare a proposal for fast-track courts to tackle paper leaks, and they worked continuously and submitted the draft to him late last night. In a video message last night, Mr. Modi said, "This draft includes provisions for fast-track courts and stringent punishment will be discussed by the cabinet today." He said after incorporating the suggestions of cabinet colleagues, it will be given its final shape. The Prime Minister said, as the second week of Parliament begins on Monday, the government will make every effort to get this bill passed by the House at the earliest.
3: मैंने फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
2: The Prime Minister said that over the past 2.5 months since the paper leak incident, several steps have been taken. The culprits have been arrested and are in jail. Mr. Modi said government's foremost responsibility was to ensure that students did not lose an academic year, and it was essential to conduct the examinations immediately.
3: मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है. लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है. और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले ढाई महीनों में अनेक विविध कदम उठाए गए. गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं. हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों

0: Headlines, PM announces fast track courts in paper leak cases. While the Hindu headlines, PM reaches out to students, Sonam Wangchuk ends fast. The Indian Express headlines, PM steps in fast track court to punish exam paper leak guilty, tough new law on the way. All papers have on their front page that amid the ongoing protests over NEET UGE paper leak issue, the government names new secretaries for higher and school education departments. And finally, justice was served in a murder case in Mohali thanks to a pet dog. The Times of India in a story says the dog would reportedly go to a spot and sit down, alerting the cops who dug up and found the victim's body. And with that, it's back to you, Pramod.
1: Thank you, Tanvi. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi promises new law to tackle paper leaks. Today's cabinet meeting to come out with stricter measures to deal with the issue. Delhi High Court sets up special fast-track court for paper leak cases after PM Modi's announcement. Activist Sonam Wangchuk ends his hunger strike in presence of Union Ministers JP Nadda and Jitendra Singh. India develops its first expendable turbojet engine of 350 kilograms thrust class. India and Romania sign three agreements in the fields of science and technology, education and sports. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: Akashwani se pesh hai khabarnama. आदाब, खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक होने के मामलों से निपटने के लिए नए कानून का वादा किया है। इस मामले के सिलसिले में आज की काबीना मीटिंग में और ज्यादा सख्त इकदाम का ऐलान किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के ऐलान के तनाजुर में दिल्ली हाईकोर्ट ने पेपर लीक केसों के सिलसिले में खसूसी फास्ट ट्रैक अदालत कायम की है। सरगर्म कारकुन सोनम वांगचुक ने मरकजी वजीरों जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है। भारत ने 350 किलोग्राम थ्रस्ट जुमरे का पहला एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन तैयार किया है। भारत और रोमानिया ने साइंस, टेक्नोलॉजी, तालीम और खेलों के शोबों में तीन समझौतों पर दस्तखत किए हैं और 23वें दौलत मुश्तरका खेल स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में शानदार रंगारंग इफ्तिताही तकरीब के साथ शुरू हो गए हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्होंने पेपर लीक होने के मामलों से निमटने की खातिर मुतालिका महकमों को फास्ट ट्रैक अदालतें कायम करने के लिए एक तजवीज तैयार करने की हिदायत दी थी और इन महकमों ने लगातार काम किया और कल रात देर गए उन्हें इसका मुसव्वदा पेश कर दिया। कल रात एक वीडियो पैगाम में जनाब मोदी ने कहा कि इस मुसव्वदे में फास्ट ट्रैक अदालतें कायम करने और सख्त सजा की गुंजाइश शामिल है और इस पर आज होने वाली काबीना की मीटिंग में गौर किया जाएगा। वजीर आजम ने कहा कि काबीना साथियों की तजवीजें शामिल करने के बाद इसे हतमी शक्ल दी जाएगी। जनाब मोदी ने यह भी कहा कि पीर के रोज पार्लियामेंट इजलास का दूसरा हफ्ता शुरू होने के साथ ही सरकार मस्कूरा बिल को ऐवान में जल्द से जल्द मंजूर कराने की भरपूर कोशिश करेगी।
3: मैंने फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
2: वजीर आजम ने कहा कि पेपर लीक होने के वाकये के बाद से गुज़श्ता ढाई महीने के दौरान कई इकदाम किए गए हैं। कसूरवार अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है और वो जेल में बंद हैं। जनाब मोदी ने कहा कि सरकार की अव्वलीन जिम्मेदारी इस बात को यकीनी बनाना था कि तलबा का तालीमी साल जाये न हो और इसीलिए बिला ताखीर इम्तहानात कराना जरूरी था।
3: मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले ढाई महीनों में अनेक विहित कदम उठाए गए। गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। सरकार ने अभी कम से कम समय में 22

0: लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाए इसका प्रबंध किया।
1: दिल्ली हाई कोर्ट ने पब्लिक इम्तिहानात में गलत तौर तरीके अख्तियार करने की रोकथाम से मुताल्लिक एक्ट 2024 के तहत केसों की समाअत के लिए एक फास्ट ट्रैक अदालत कायम की है। इस इकदाम का मकसद इम्तिहानात में नामुनासिब तौर तरीकों से मुताल्लिक मामलात को तेजी के साथ निपटाना है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: नई तश्कील दी गई ये फास्ट ट्रैक अदालत जुडिशल अफसर अन्नू ग्रोवर बालिगा की सरबराही में राउस एवेन्यू कोर्ट्स में काम करेगी। दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक ये अदालत इम्तहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक 2024 के एक्ट के तहत दर्ज किए गए केसों और दीगर मुतालिका मामलात की समाअत करेगी। मस्कुरा इकदाम का मकसद इम्तहानात में नामुनासिब तौर तरीकों के इस्तेमाल से वाबस्ता मामलात को तेजी के साथ निपटाना है। इम्तहान के पर्चे लीक होने के मामलात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ तेजी के साथ सख्त सजा को यकीनी बनाने की खातिर फास्ट ट्रैक अदालतें कायम करने के मरकज के फैसले के बारे में वजीर आजम के ऐलान के चंद घंटों के अंदर ही ये उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। दिल्ली से रोहन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
1: सरगर्म कारकुन सोनम वांगचुक ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में मरकजी वुजरा जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में 26 रोज के बाद अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी। इससे पहले मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से वाबस्ता पार्लियामेंट के 65 अराकीन उनके पास आ चुके थे या भूख हड़ताल खत्म करने की अपील करते हुए खतों पर दस्तखत कर चुके थे। जनाब वांगचुक ने कहा कि मुख्तलिफ सूरतेहाल पर तवील बातचीत के बाद ऐसा हुआ है। उन्होंने कहीं भी किसी भी तरह का तशद्दुद न होने देने के लिए हर किसी से बहुत मुस्तैद रहने पर जोर दिया। जनाब वांगचुक ने निज़ाम तालीम में इस्लाहात और पेपर लीक के सिलसिले में जवाबदेही तय करने के मुतालबात करते हुए पिछले महीने की 28 तारीख को भूख हड़ताल शुरू की थी। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि पाकिस्तान से काम करने वाले उन 480 सोशल मीडिया हैंडल्स की निशानदेही करके उन्हें ब्लॉक कर दिया गया है जो एक मुनज्जम तरीके से गलत जानकारी फैलाने की मुहिम में मुलव्वस थे। दिल्ली पुलिस के डीसीपी सुमित झा ने बताया कि ये सोशल मीडिया हैंडल्स तलबा और नौजवानों को गुमराह करने के लिए अफवाहें और झूठे दावे फैलाने में मुलव्वस थे। उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो किसी भी तरह की जानकारी पर भरोसा करने और उसे शेयर करने से पहले जानकारी की तस्दीक कर लें।
0: हमने नोटिस किया है कि सोशल मीडिया में कुछ मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक 400 से ज्यादा पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल्स आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं जो इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए फेक कंटेंट और र्यूमर्स स्प्रेड कर रहे हैं, उनको ब्लॉक कराया जा रहा है। ये वही सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी एक्टिव थे। उनका सिर्फ एक ही मकसद है, लोगों को भड़काना और स्पेशली स्टूडेंट्स का ध्यान भटकाना। मेरी आपसे अपील है कि बच्चों की सेफ्टी के लिए किसी भी फेक पोस्ट, एडिटेड वीडियोस या एनोनिमस हैंडल से किया हुआ कोई भी पोस्ट के भड़कावे में ना आए।
1: दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने कहा है कि कौमी राजधानी में सिक्योरिटी वजूहात से 17 मेट्रो स्टेशन सुबह 7:30 बजे से मजीद हिदायत जारी होने तक बंद हैं। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, झंडेवालान, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। डीएमआरसी ने अलबत्ता ये भी कहा है कि राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पर ट्रेन बदलने की सहूलत दस्तियाब रहेगी। मरकज ने मुख्तलिफ वजारतों और महकमों में सेक्रेटरियों की तकरीरी की है। विनीत जोशी जो इस वक्त तालीम की वजारत में आला तालीम के सेक्रेटरी हैं, उन्हें पंचायती राज की वजारत में सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है। नरेश पाल गंगवार आला तालीम के नए सेक्रेटरी होंगे। टी के अनिल कुमार स्कूली तालीम और खानदगी के सेक्रेटरी मुकर्रर किए गए हैं। केशव चंद्र कानून की वजारत जबकि चंद्रभूषण कुमार मेहनत और रोजगार की वजारत में सेक्रेटरी होंगे। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारत ने अंदरून मुल्क वसाइल से 350 किलोग्राम थ्रस्ट जुमरे का पहला एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन तैयार किया है। दिफाई तहकीक और तरक्की की तंजीम DRDO के गैस टर्बाइन तहकीक इदारे ने इसे तैयार किया है। वजारत दिफा ने कहा है कि DRDO के डिजाइन पर मबनी इस तरह के कॉम्प्लेक्स निजाम की दस्तियाबी से मुल्क की दिफाई सनत की बढ़ती हुई तकनीकी सलाहियत की अक्कासी होती है। भारत की साइंसी और सनती बिरादरी के दरमियान करीबी साझेदारी और कई वर्षों की इंजीनियरिंग और जदीद मैन्युफैक्चरिंग के नतीजे में ये कामयाबी हासिल हुई है। दिफाई तहकीक तरक्की की तंजीम DRDO ने तवील दूरी के जमीन से फिजा में वार करने वाले मिजाइल कुशा की पहली कामयाब आजमाइश की है। ये तजुर्बा ओडिशा के साहिल के नज़दीक APJ अब्दुल कलाम जजीरे पर किया गया। वजारत दिफा ने कहा है कि यह पहली आजमाइश बुलंदी पर तेज रफ्तार इलेक्ट्रॉनिक हदफ को निशाना बनाकर कामयाबी के साथ अंजाम दी गई। वजारत ने कहा है कि कुशा मिजाइल निज़ाम लड़ाका जेट, हवाई जहाजों, मिजाइलों, ड्रोन और दुश्मन के बड़े हवाई जहाज समेत फिजा में मुख्तलिफ तरह के खतरात को नाकारा बनाने की सलाहियत रखता है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने इस कामयाबी के लिए DRDO और दीगर मुतालिका इदारों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वज़ीर मौसूफ ने कहा कि यह कामयाबी भारत की दिफाई तहकीक और तरक्की में एक अहम संग मील है। भारत और रोमानिया ने साइंस, टेक्नोलॉजी, तालीम और खेलों के शोबों में इश्तराक की खातिर 3 समझौतों पर दस्तखत किए हैं। इन समझौतों पर कल बुखारेस्ट में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और उनके रोमानिया के हमनसब निकोसर डैन के दरमियान वफ्द सतह की बातचीत के बाद दस्तखत किए गए। पेश है एक रिपोर्ट।
3: अपने प्रेस बयान में सदर जमहूरिया ने कहा कि शराकत दारी ज्यादा मकासद, मुस्तहकम इश्तराक और मुस्तकबिल के लिए एक मुश्तरक नजरिए के साथ एक नए मरहले में दाखिल हो रही है। उन्होंने कहा कि उन्होंने और उनके हम मनसब ने एक बामानी और सूदमंद तबादला ख्याल किया और हालिया बरसों में हुई पेशरफ का जायजा लिया गया। सदर मुर्मू ने कहा कि दोनों ममालिक ने अपनी मुतल्लिका तरजीहात से मुताबिकत रखते हुए मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर रजामंदी जाहिर की है।
4: हम व्यापार और निवेश को बढ़ावा देंगे, सप्लाई चेन को मजबूत बनाने तथा दोनों देशों के उद्योग जगत के बीच घनिष्ठ सहयोग को प्रोत्साहित करने पर सहमति व्यक्त की। हमने अगले 3 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दुगुना करने का भी लक्ष्य निर्धारित किया है।
3: उन्होंने कहा कि भारत और रोमानिया ने आइंदा 3 बरस में बाहमी तिजारत को दुगुना करने का हदफ रखा है। सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत यूरोपीय यूनियन आज़ाद तजारती मुहिदा सनतों और हुनरमंद पेशावर अफराद के लिए बेशुमार इम्कान पैदा करेगा। उन्होंने कहा कि भारत और रोमानिया ने मैन्युफैक्चरिंग, अद्वियात, सेहत की देखभाल, काबिल तजदीद तवानाई, ग्रीन हाइड्रोजन, ज़रई पैदावार, खाद, साइंस टेक्नोलॉजी, डिजिटल अवामी बुनियादी ढांचे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। रोमानिया के बुखारेस्ट से सुभाश्री महापात्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
1: ओडिशा के पवित्र साहिली शहर पुरी में आलमी शोहरत याफ्ता बहुधा यात्रा का अहतमाम किया जा रहा है। इसके तहत भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन श्री गुंडिचा मंदिर में 1 हफ्ते के क्याम के बाद वापसी का सफर करते हुए श्री जगन्नाथ मंदिर में वापस आएंगे। इस तरह सालाना यात्रा अख्ताम पजीर हो जाएगी। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आज मशरकी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में बहुत शदीद से इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात की एजेंसी ने आइंदा 2 रोज के दौरान हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तराखंड में भी शदीद बारिश की पेशगोई की है। इधर गुज़श्ता 48 घंटों में गुजरात में मुसलसल मूसलाधार बारिश से अहमदाबाद, सूरत, नवसारी और वलसाड़ समेत वस्ती और जनूबी खित्तों के मुख्तलिफ अजला में शदीद तौर पर पानी जमा हो जाए और अचानक सैलाब की सूरतेहाल पैदा हो गई है। 23वें दौरत मुश्तरका खेलों का शानदार और रंगारंग इफ्तिताही तकरीब के साथ स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आगाज हो गया है। इन 10 रोजा खेल मुकाबलों में 74 मुल्कों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। भारत की परचमबरदार मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन भारतीय दस्ते की क्यादत करते हुए भारतीय तिरंगा लहराते हुए OVO हाइड्रो अरीना में दाखिल हुई। इफ्तिताही तकरीब से पहले ही दौलत मुश्तरका खेलों में तमगों के मामले में भारत ने अपना खाता उस वक्त खोला जब ओलंपिक में मेडल जीत चुकी मुक्केबाज लवलीना सीधे खवातीन के 75 किलोग्राम के जुमरे के सेमीफाइनल में पहुंच गईं। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
3: शुक्रिया अर्जुमन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के सभी उर्दू अखबारों ने पेपर लीक मामले में वज़ीर आज़म मोदी के जरिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के ऐलान को अपनी शहसुर्खी बनाया है। अखबार प्रताप ने वज़ीर आज़म के हवाले से सुर्खी लगाई है, पेपर लीक के मुलजमान को जल्द सख्त सजा देने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें कायम की जाएंगी। اخبار نے مرکزی وزارت داخلہ کے اس بیان کو نمایاں کیا ہے کہ وہ سیلاب سے متاثرہ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو ضروری امداد فراہم کر رہی ہے۔ اخبار انقلاب لکھتا ہے، آسام میں سیلاب سے ہلاکتوں کی تعداد 41 ہو گئی، 6 لاکھ افراد متاثر۔ اخبار پرتاب نے حکومت کی اس وضاحت کو صفحہ اول پر جگہ دی ہے کہ E20 پیٹرول محفوظ ہے، انجن پر منفی اثرات کا کوئی سائنسی ثبوت نہیں۔
1: اور باخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے پیپر لیک ہونے کے معاملوں سے نمٹنے کے لیے نئے قانون کا وعدہ کیا ہے۔ اس معاملے کے سلسلے میں آج کی کابینہ میٹنگ میں اور زیادہ سخت اقدامات کا اعلان کیا جائے گا۔ وزیراعظم نریندر مودی کے اعلان کے تناظر میں دلی ہائی کورٹ نے پیپر لیک کیسوں کے سلسلے میں خصوصی فاسٹ ٹریک عدالت قائم کی ہے۔ سرگرم کارکن سونم وانگچک نے مرکزی وزیروں جے پی نڈا اور جتیندر سنگھ کی موجودگی میں اپنی بھوک ہڑتال ختم کر دی ہے۔ بھارت نے 350 کلو گرام تھرسٹ زمرے کا پہلا ایکسپینڈیبل ٹربوجیٹ انجن تیار کیا ہے۔ بھارت اور رومانیہ نے سائنس، ٹیکنالوجی، تعلیم اور کھیلوں کے شعبوں میں 3 سمجھوتوں پر دستخط کیے ہیں اور 23 دولت مشترکہ کھیل اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسگو میں شاندار رنگا رنگ افتتاحی تقریب کے ساتھ شروع ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔

0: Ye.
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का विशेष यात्रा प्रसारण। मैं हूं फैजान कुरैशी। ये प्रसारण आप FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, वेविज OTT प्लेटफॉर्म न्यूज़ ऑन AIR ऐप के आराधना चैनल तथा DTH के माध्यम से देश और विदेश तक प्रसारित किया जा रहा है। यात्रा के दौरान अपना यात्रा परमिट और पहचान पत्र हमेशा अपने साथ रखें। मौसम में अचानक बदलाव हो सकता है, इसलिए रेनकोट और गर्म कपड़े साथ रखना न भूलें। आप सभी से निवेदन है कि यात्रा के दौरान प्रशासन द्वारा जारी सारे निर्देशों का पालन करें, क्योंकि सुरक्षित यात्रा ही सफल यात्रा है। आप सभी यात्रियों की सुरक्षा, स्वस्थ और मंगल यात्रा के लिए हमारी शुभकामनाएं।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का विशेष यात्रा प्रसारण, जो एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप के आराधना चैनल तथा डीटीएच के माध्यम से देश और विदेश तक प्रसारित किया जा रहा है। इस विशेष प्रसारण के दौरान हम आप तक श्री अमरनाथ जी यात्रा से जुड़ी हर महत्वपूर्ण और प्रामाणिक जानकारी पहुंचाते रहते हैं और यात्रा मार्ग की वर्तमान स्थिति, मौसम के हाल के साथ साथ प्रशासन द्वारा जारी ताज़ा सूचनाओं से भी हम आपको लगातार अवगत कर रहे हैं। और हमने इस दौरान अपने संवाददाताओं से भी बात की, क्योंकि मौसम की सूरत हाल इस वक्त खराब है, कई जगहों पर बारिश हो रही है, और हमारे संवाददाता जो है उन्होंने आपको इस हवाले से भी अवगत किया, इन्फॉर्म किया कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। और हम जो हमारे श्रोता हैं और जो तमाम यात्रियों से हम गुजारिश करते हैं, निवेदन करते हैं कि यात्रा के दौरान प्रशासन द्वारा जारी सभी निर्देशों का पालन करें, क्योंकि सुरक्षित यात्रा ही सफल यात्रा है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता जावेद मेहराब साहब जुड़े हुए हैं। जावेद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
1: जी, बहुत शुक्रिया आपका भी।
0: जी जावेद साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, यात्रा के हवाले से आप हमें जो ताज़ा जानकारी है उस हवाले से हमारे श्रोताओं को इन्फॉर्म कर दीजिएगा, और मौसम की क्या सूरत हाल है, हाईवे की क्या सूरत हाल है, और यात्रा के हवाले से ताज़ा जानकारी जो है वो हमारे श्रोताओं को दीजिए, जो जानना जो है उनके लिए ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है।
1: जी, मैं आपको बताऊं कि जम्मू में लगातार बारिशें जो हैं वो लगातार जारी हैं, रुक रुक कर हो रही हैं, थोड़ा कम भी हो रही हैं, लेकिन मौसम में अब सुधार की तरफ रास्ता खुल रहा है। हालांकि बादल आसमान पर छाए हुए हैं, वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग की जिस तरह से आपने बात की, तो राष्ट्रीय राजमार्ग लगातार हो रही बारिशों से और भूस्खलन से बाधित है, और पिछले 5 दिनों से पवित्र अमरनाथ यात्रा के साथ साथ माता वैष्णो देवी की यात्रा भी बंद है। हजारों ट्रक्स जो हैं वो उधमपुर के करीब हाईवे पर बंद लंबी कतारों में मौजूद हैं, और इस तरह से जो है यात्रा का जो संचालन है वो पूरी तरह से मौसम पर निर्भर है। तो अधिकारी और प्रशासन भी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि जैसे ही मौसम कब तक मौसम ठीक होगा और यात्रा को फिर से यहाँ से रवाना कर दिया जाएगा। इसी सिलसिले में कल भी पवित्र श्री अमरनाथ जी की यात्रा को लेकर समीक्षा बैठक हुई, उपराज्यपाल ने उसकी अध्यक्षता की और उन्होंने कहा कि पवित्र श्री अमरनाथ जी यात्रा का संचालन पूरी तरह से मौसम की परिस्थितियों पर ही निर्भर है।
0: जी
1: तो
0: जी
1: ये एक सिचुएशन है जो कुदरती, क्योंकि इसका संचालन जो है पूरी तरह से मौसम पर ही निर्भर है। मौसम का मिजाज कैसा रहेगा, मौसम का रुख कैसा रहेगा, क्योंकि पहाड़ी श्रृंखलाओं का सफर है और जम्मू से लेकर घाटी तक भी आपको पहाड़ी रास्ते से ही होकर जाना है। हालांकि वो पहाड़ी रास्ता अब बहुत बेहतर भी हो गया है।

0: लाए। लेकिन इस दौरान जैसे ही बारिशें लगातार चलती हैं तो भूस्खलन की जो सिचुएशन है वो उत्पन्न हो जाती है, जिसकी वजह से रास्ते बंद हो जाते हैं। और आज वही पिछले 5 दिनों से मौसम की परिस्थिति को लेकर ही यात्रा स्थगित की गई है, आरजी तौर पर स्थगित है। लेकिन जैसे ही प्रशासन ने हमेशा कहा है, जैसे ही मौसम बिल्कुल साफ हो जाएगा और जो रास्ता है हाईवे का, नेशनल राष्ट्रीय राजमार्ग का, वो उस पर जैसे ही स्पष्ट हो जाएगा कि रास्ता बिल्कुल ठीक है, यात्रा को अनुमति दे दी जाएगी घाटी की ओर जाने की। लेकिन फिलहाल अभी मौसम की परिस्थिति ऐसा करने पर बिल्कुल इनकार कर रही है, और उसी को लेकर, यात्रा के संचालन को लेकर इस समीक्षा मीटिंग में ये पूरी तरह से कहा गया इस बैठक में कि यात्रा पूरी तरह से उसका जो संचालन है वो मौसम की परिस्थितियों पर निर्भर है। और बारिश, भारी बारिश के मद्देनजर उपराज्यपाल ने एक समीक्षा बैठक में ये कहा कि लगभग 3,91,000 श्रद्धालुओं ने अभी तक बाबा बर्फानी के दर्शन कर दिए हैं, जो कि एक रिकॉर्ड भी है इतने कम दिनों में, लगभग 20 दिनों के ही इस पूरे समय में इतना बड़ा आंकड़ा पार हुआ। लेकिन उस आंकड़े के पीछे पूरी एजेंसी, पूरा समीक्षा, पूरी जो अधिकारी और पूरा जो तत्व लगा हुआ था वो पूरी तरह से ये सुनिश्चित कर रहा था कि तीर्थयात्री जो यहाँ जम्मू पहुंच रहे हैं, पहले यहाँ निवास स्थान भगवती नगर से हर रोज हजारों की संख्या में यहाँ जो तीर्थयात्री श्रद्धालु बराबर निकल रहे थे, लेकिन जैसे ही 19 जुलाई के बाद मौसम खराब हो गया और उसके बाद एक ये कहा गया कि रास्ता फिलहाल बंद है और मौसम की परिस्थितियों को लेकर फिलहाल यात्रा को बंद कर दिया गया है। लेकिन ये अस्थाई रूप से ये बंद कर दी गई थी यात्रा, और इसमें इन्होंने इस समीक्षा बैठक में कल जो उन्होंने उपराज्यपाल ने की, उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि भारी बारिश के मद्देनजर भी यात्रा मार्ग से तत्काल मलबा हटाने, बाढ़ सुरक्षित उपायों को मजबूत करने, और साथ ही 24 घंटे जो है वो प्रबंधन की व्यवस्था को सक्रिय रखने और यात्रा मार्गों की सफाई स्वच्छता को नियमित रखने की उन्होंने निर्देश दिए। और साथ ही उन्होंने LPG और जो खाने पीने का भंडार है उसको पूरी तरह से, राशन के भंडार को पूरी तरह से सुनिश्चित करने को कहा है। इस तरह से इसी तरह से यात्रा के मार्गों पर बिना रजिस्ट्रेशन के सेवा प्रदाताओं को भी उन्होंने फिलहाल रोक लगाने की बात की है, और सभी सेवाओं के लिए 100% प्रीपेड व्यवस्था लागू करने के निर्देश भी दिए हैं। तो बैठक जो है उसमें उच्च अधिकारी भी थे, पुलिस भी थी, फौज भी थे, और श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के सचिव अधिकारी भी मौजूद थे। इस मौके पर उपराज्यपाल ने एजेंसियों के प्रयासों की सराहना भी की, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, प्रशासन, सुरक्षा बल, श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड, सेवा जो कर रहे लोग हैं, और जो भी जितनी संस्थाएं हैं उनको सराहा, और सभी की जो प्रयास है उससे ही श्री अमरनाथ जी यात्रा सुरक्षित और सफलतापूर्वक उसका संचालन हो रहा है, उन्होंने ये बात कही। लेकिन मौसम को देखते हुए उन्होंने फिलहाल श्रद्धालुओं से सब्र रखने की बात की है, क्योंकि जैसे ही मौसम बेहतर होगा, रास्ते की जो हालत है राष्ट्रीय राजमार्ग की वो बेहतर होगी, तो उसके साथ ही दोबारा जो है यात्रा को फिर से घाटी की ओर बाबा बर्फानी के द्वार की तरफ रवाना होने की अनुमति मिलेगी। जी
1: जी जावेद महराब जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप यात्रा के हवाले से महत्वपूर्ण और जानकारी हमारे श्रोताओं को दे रहे थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत शुक्रिया।
1: जी श्रोताओं, ये थे हमारे संवाददाता जावेद महराब साहब, जो जम्मू से हमें यात्रा के हवाले से, जो इस वक्त स्थिति है उस हवाले से हमें इन्फॉर्म कर रहे थे। श्री अमरनाथ जी यात्रा देश भर के श्रद्धालुओं के लिए आस्था और विशेष का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। जिसमें देश के

अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। यात्रा के दौरान यात्रियों की सहूलियत और सुरक्षा के लिए प्रशासन की तरफ से खास इंतजाम किए जाते हैं। यात्रियों से अपील है कि वो अपने सफर के दौरान जरूरी सावधानी बरतें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। आप हमारे साथ बने रहे और सुनते रहे ये विशेष प्रसारण।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का विशेष यात्रा प्रसारण। श्रोताओं, हमने आपको आगाह कर दिया कि इस वक्त यात्रा की क्या सूरत हाल है। तो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता अनंतनाग से एस तारिक साहब। जी तारिक साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: बहुत शुक्रिया फैजान कुरैशी साहब।
0: जी तारिक साहब, हमें आप ये बता दीजिए कि इस वक्त श्री अमरनाथ जी यात्रा की क्या स्थिति है, यात्रियों का उत्साह कैसा है और प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं, और जो इस वक्त मौसम की सूरत हाल इस वक्त ख़राब है और कई जगहों पर इस वक्त भी बारिश हो रही है, तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ा है और क्या सूरत हाल है इस वजह से भी, वो बता दीजिए।
1: हाँ बिल्कुल जी, इस विशेष प्रसारण के सभी श्रोताओं को मेरा सादर शुभ प्रभात। आज श्री अमरनाथ जी यात्रा के 22 दिन पूरे हो चुके हैं। गुज़श्ता कई दिनों से पूरी वादी घाटी में, जो कश्मीर घाटी में, लगातार बारिशें हो रही है और इस समय भी प्राचीन मार्ग पहलगाम तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में वर्षा का सिलसिला जारी है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार आज भी दिन भर वक्फे वक्फे से वर्षा होने की संभावना है। आकाश आमतौर पर अब लालूद और वातावरण धुंधला रहेगा, जबकि विभिन्न दिशाओं से हवाएं चलने का भी अनुमान है। इस समय पहलगाम का तापमान 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज है, जबकि वातावरण में नमी की मात्रा लगभग 68% रहने का अनुमान है। बिगड़ते हुए मौसम और यात्रा मार्ग पर अतपन स्थिति को देखते हुए श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के मद्देनजर श्री अमरनाथ जी यात्रा आज लगातार 6ठे दिन भी आरजी रूप से निलंबित रही। तो

आज भी नलवा चंद्रवारी और जम्मू के भगवती नगर आधार शिविरों से किसी भी श्रद्धालु को पवित्र गुफा के और आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जैसे ही मौसम में सुधार आएगा और यात्रा मार्ग को पूरी तरह सुरक्षित करार दिया जाएगा, श्री अमरनाथ जी यात्रा को पुण्य आरंभ दिया जाएगा। निरंतर मौसमदार वर्षा के कारण शीशनाग नाला, लिदर नाला, बेता वैली, आवारा और नाला तथा पहलगाम के अन्य जल धारों में भी जल स्तर भी जो बढ़ोतरी हुई है वो दर्ज की गई है और कई स्थानों पर बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। इधर दरिया में जालिम की कई

0: निशानी दिखाई नहीं दे रही थी और पानी बढ़ता जा रहा था, लेकिन आज रात को उसमें कमी आ गई है, ये एक अच्छी खुशहाल बात है। तो इसी तरह दरिया में जहलम के संगम गए स्थान पर जल स्तर 19.11 फीट रिकॉर्ड किया गया है, जहाँ पानी की सतह में कमी दर्ज की जा रही है।
1: जी
0: पांपोर जो चूंकि इसी साउथ एरिया से दक्षिणी कश्मीर से मिलता जुलता है, तो पांपोर में जल स्तर 5.19 मीटर तक पहुंच गया है, जो इंतहाई और खतरे के हद से ऊपर है, क्योंकि वो बीच में है। अभी यहाँ का पानी वहां तक जा रहा है, इसलिए इसमें कोई ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि पानी आगे जा रहा है, एक दो घंटे में वहां भी पानी जो खतरे के निशान से वो नीचे जाएगा और वहां पानी की सतह में इजाफा तो हो रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे कम भी होगा। इसी तरह राम मुंशीबाग श्रीनगर में जहलिम का जल स्तर 19.14 फीट दर्ज किया गया, जो इंतहाई रेखा से ऊपर है और पानी की सतह में बराबर इजाफा हो रहा है। यही बात है जो मैं पांपोर की कर रहा हूँ, वही तरीका है राम मुंशीबाग के। विश्वनाला जो पुरवनी है, जो सबसे अहम है हमारे दक्षिणी कश्मीर के लिए, वहाँ जो स्तर जो है 6.30 मीटर दर्ज किया गया है, जहाँ पानी की सतह में कमी आ रही है, जबकि रंबी आरा नाला विची में जल स्तर 1.95 मीटर रिकॉर्ड किया गया और वहां भी पानी की सतह घट रही है। तो ऐसा लग रहा है कि सारी जगहों पे पानी अब घटना शुरू हो गया है और मौसम विभाग के अनुसार आज की एडवाइजरी में कहा गया है कि कल सुबह वादी कश्मीर में दरमियाना से या शदीद बारिशों का एक नया सिलसिला होने का इम्कान है। इस बारिश का सबसे ज्यादा असर जो है दक्षिणी कश्मीर यानी जनूबी कश्मीर, जिसमें 4 जिले आते हैं, जिसमें हमारा प्राचल मार्ग पहलगाम भी आता है, इस क्षेत्रों पर पड़ सकता है। इधर जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई स्थानों पर बसियां गिराने के कारण यातायात फिलहाल रोक दी गई है। ट्रैफिक विभाग ने सभी यात्रियों और आम नागरिकों से अनुरोध किया है कि वो खराब मौसम के मद्देनजर सफर पर निकलने से पहले मौसम और ट्रैफिक की ताजा जानकारी अवश्य हासिल करें और इसी के अनुसार अपना सफर निर्धारित करें। आशा है कि मौसम में जल्दी ही सुधार

0: वहीं जो सुनाए हैं प्रशासन के ओर से बिल्कुल उपलब्ध रखी गई है। मौसम अनुकूल होते ही यात्रा मार्ग को सुरक्षित करा दिए जाने के बाद ही उन्हें पवित्र गुफाओं के ओर रवाना किया जाएगा। जी
1: जी तारिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने हमें इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है यात्रा के हवाले से और मौसम की क्या स्थिति है इस हवाले से हमने आपने हमें आगाह किया। बहुत बहुत धन्यवाद ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। जी, ये थे हमारे संवाददाता अनंतनाग से एस तारिक, जो यात्रा के हवाले से हमें इन्फॉर्म कर रहे थे कि इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है। और इन्होंने ये भी कहा कि जो यात्री है उन्हें जो प्रशासन की तरफ से जो निर्देश है उनको पालन करने की ज़रूरत है, क्योंकि मौसमी सूरत हाल जो है वो इस वक्त ख़राब है। कई जगहों पर इस वक्त भी बारिशें हो रही है। हम मज़ीद संवाददाताओं से आपको बात कराएंगे और वो भी हमें इस हवाले से जानकारी देंगे कि इस वक्त क्या सूरत हाल बनी हुई है जहाँ पर वो है और प्रशासन की तरफ से क्या इंतज़ामात हैं, लेकिन कुछ वक्फे के बाद।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का विशेष यात्रा प्रसारण, जो एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप के आराधना चैनल तथा डीटीएच के माध्यम से देश और विदेश तक प्रसारित किया जा रहा है। इस विशेष प्रसारण के दौरान हम आप तक श्री अमरनाथ जी यात्रा से जुड़ी हर महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण जानकारी पूछा रहे हैं, और यात्रा के हवाले से इस वक्त क्या स्थिति है, मौसम के हाल के साथ साथ प्रशासन द्वारा जारी ताज़ा सूचनाओं से भी हम आपको अवगत कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है गांधरबल से हमारे संवाददाता रहीम रिजवान साहब। जी रहीम साहब, रहीम रिजवान साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।
0: जी रिजवान साहब, आपसे मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आप जिस स्थल पर मौजूद है, जिस जगह पर मौजूद है, तो यहाँ पे बारिशें भी हो रही है, मौसम ख़राब है, तो क्या सूरत हाल है, क्या अपडेट है यात्रा के हवाले से?
1: यात्रा के हवाले से पहले हम अपने श्रोताओं को बालतल क्षेत्र के वातावरण एवं मौसम की स्थिति के बारे में विस्तार से सूचना साझा करते हैं। लिहाजा श्रोताओं, बालतल से पवित्र गुफा तक, जैसा कि मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि घाटी में बीते 6 दिनों से लगातार हो रही वर्षा के कारण तापमान सामान्य से काफी कम दर्ज किया जाता है। रात एवं दिन के दौरान जो लगातार वर्षा हो रही है, उससे चारों ओर सैलाबी सूरत हाल बनी हुई है। नाले सिंध में पानी की सतह बढ़ती जा रही है। यहाँ आकाश पर घने बादल छाए हुए हैं। लगातार वर्षा होने की संभावना बनी हुई है, जिसके कारण घाटी के साथ साथ बालतल के पूरे क्षेत्र में भारी वर्षा बीते 6 दिनों से हो रही है।
0: जी
1: इस दौरान किसी भी यात्री को आज छठे रोज भी बालतल बेस कैंप से पवित्र गुफा की ओर जाने की अनुमति नहीं दी गई। श्रोताओं, आप बालतल के मौसम के बारे में जानते हैं कि यहाँ खुशगवार मौसम के बीच भी हर रोज अचानक मौसम करवट लेता है तथा वर्षा शुरू होती है। इसके बरक्स आज मौसम की स्थिति बिल्कुल खराब बनी हुई है। लिहाजा प्रशासन ने यात्रा ट्रैक की हालत एवं मौसम की स्थिति मद्देनजर रखते हुए यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित करने का निर्णय लिया है, ताकि यात्री सुरक्षित रहे एवं उन्हें तीर्थ यात्रा के दौरान किसी प्रकार कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। अगरचे प्रशासन ने यात्रियों की सहायता के लिए हर पड़ाव पर उच्च स्तर की सुविधाएं उपलब्ध रखी हैं तथा यात्रियों की सुरक्षा के लिए हर पड़ाव पर सुरक्षा के भी कड़े प्रबंध किए गए हैं, ताकि देश के विभिन्न भागों से घाटी आगमन होने वाले श्रद्धालु पवित्र गुफा जाकर बाबा बर्फानी के आशीर्वाद से प्राप्त होंगे तथा वे माथा टेक कर देश एवं घाटी की अमन शांति और विकास के लिए प्रार्थना करेंगे। वो अवश्य पवित्र गुफा पहुंच कर शिवलिंगम का दर्शन तभी करेंगे जब वे सुरक्षित गुफा तक पहुंचेंगे, क्योंकि खराब मौसम के दौरान बालतल मुखी मार्ग से ऊंचे पर्वतों के बीच सफर करना बहुत ही कठिन है। वर्षा के दौरान यहाँ चलने फिरने में दिक्कतें पेश आ रही हैं। हालांकि प्रशासन ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन RCC 122 के माध्यम से यात्रा ट्रैक को कुशादा किया है एवं उसे काबिले आमदरफ्त भी बना दिया गया, मगर वर्षा के दौरान यहां लैंडस्लाइड का खतरा रहता है, जिस दौरान इन कठिन रास्तों पर सफर करना मुश्किल ही नहीं बल्कि महाल भी है। लिहाजा ऐसी सूरत हाल मद्देनजर रखकर प्रशासन ने श्री अमरनाथ जी यात्रा स्थायी रूप से निलंबित कर दी है। मौसम में बेहतरी आते ही श्रद्धालुओं को फिर से दर्शन के लिए पवित्र गुफा की ओर जाने की अनुमति दी जाएगी एवं 27 रोज जारी रहने वाली तीर्थ यात्रा 28 अगस्त रक्षाबंधन के मौके पर इख्तिताम पजीर होगी। इसके साथ साथ यात्रा रूट पे हमें दो महत्वपूर्ण पड़ाव जो आते हैं वो है ट्रांजिट कैंप शादीपुरा एवं ट्रांजिट कैंप मणिगाम। इन दोनों ट्रांजिट कैंपों में प्रशासन ने यात्रियों की सहायता के लिए उच्च स्तर की सुविधाएं उपलब्ध रखी हैं, और इसके साथ साथ जो सुरक्षा

0: कड़े प्रबंध किए गए हैं उस पे। बाजाबता तौर यहाँ सिविल और पुलिस के आला अफसरान कड़ी नजर रखे हुए हैं। आज हम बात करेंगे ट्रांजिट का मनगाम की, जहाँ सुपर इंटेंडेंट ऑफ पुलिस आबिद रशीद मीर, जो बाजाबता तौर सुरक्षा की निगरानी कर रहे हैं, और उनके हमरा नोडल ऑफिसर इंचार्ज ट्रांजिट का मनगाम, जो ACR गांधरबल भी है, यानी डॉक्टर शेख सलाहुद्दीन, ये दोनों अफसरान जो है वो बाजाबता तौर इसकी निगरानी कर रहे हैं। और इसकी उनकी निगरानी में ही जो यात्री यहाँ 5 बजे के बाद पहुँचते हैं, चाहे वो बालतल बेस कैंप से या दर्शन करके वापस पहुँचेंगे या जम्मू भगवती नगर बेस कैंप से यहाँ पहुँचेंगे, तो उन्हें इन दोनों ट्रांजिट कैंपों यानी ट्रांजिट कैंप शादीपुरा और ट्रांजिट कैंप मनगाम से आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जाती है। तो इन यात्रियों को 5 बजे के बाद जो ही यहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें इन दोनों ट्रांजिट कैंपों में रात भर कयाम करना पड़ता है। रात्रि विश्राम के बाद इन उन यात्रियों को अपनी अपनी मंजिल मकसूद की तरफ जाने की अनुमति दी जाती है। इस तरह न सिर्फ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बल्कि श्रीनगर कारगिल राजमार्ग पर भी चारों ओर सुरक्षा कर्मी चाकू चौबंद नजर आ रहे हैं। तो यात्रा कॉन्वॉय के दौरान किसी भी प्राइवेट या सरकारी वाहन को आगे या पीछे जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। यात्रा की सुरक्षा जिला प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण है, तो हर लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए जगह जगह कड़े प्रबंध किए गए हैं ताकि यात्रा सुखद तरीके पर संपूर्ण हो सके। जी
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका रहीम रिजवान साहब, आपने विस्तार से हमें बताया कि यात्रा के हवाले से क्या अपडेट है और क्या जानकारी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: धन्यवाद आपका भी।
1: जी श्रोताओं, ये थे हमारे संवाददाता रहीम रिजवान साहब, जो गांधरबल से हमें रिपोर्ट दे रहे थे। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का विशेष यात्रा प्रसारण, जो FM बालतल 100.1 मेगाहर्ट्ज़, वेव्स, OTT प्लेटफॉर्म, न्यूज़ ऑन AIR ऐप के आराधना चैनल तथा DTH के माध्यम से देश और विदेश तक प्रसारित किया जा रहा है। श्रोताओं, यात्रा के दौरान अपना यात्रा परमिट और पहचान पत्र हमेशा अपने साथ रखें। मौसम में अचानक बदलाव हो सकता है, इसलिए रेनकोट और गर्म कपड़े साथ रखना न भूलें। और आप सभी से निवेदन है कि यात्रा के दौरान प्रशासन द्वारा जारी सभी निर्देशों का पालन करें, क्योंकि सुरक्षित यात्रा ही सफल यात्रा है। और आप सभी यात्रियों की सुरक्षा, स्वस्थ और मंगल यात्रा के लिए हमारी शुभकामनाएं। हम यात्रा के हवाले से आपको मज़ीद इन्फॉर्म करेंगे, जानकारी देंगे कि यात्रा की सूरत हाल क्या है, और ख़ास तौर पर जो इस वक्त बारिशों की वजह से यात्रा को मुअत्तल किया गया है कुछ टाइम के लिए, रोड के हवाले से जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कब खुलेगा उस हवाले से भी हम आपको आगाह करते रहेंगे। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी तरफ से जो भी गाइडलाइंस है उनको फॉलो करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो भी यही चाहते हैं कि हम और हमारे जो श्रोता है वो सुरक्षित रहे।
2: मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
3: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए।

0: के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
0: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्ट पेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्री पेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करेगा। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए, हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं, हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों।
0: किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए, इसके लिए आपको अपने समूह के किसी सदस्य जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं का नाम, पता और मोबाइल टेलीफोन नंबर का एक नोट अपनी जेब में जरूर रखें। साथ ही अपना यात्रा परमिट या कोई और पहचान पत्र भी अपने साथ रखें।

0: रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
1: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: उन स्थानों पर ना रुकें जो चेतावनी नोटिस द्वारा चिन्हित हैं। चप्पल का उपयोग ना करें क्योंकि पवित्र गुफा के मार्ग पर खड़ी चढ़ाई है। केवल फीते वाले ट्रैकिंग शूज ही पहनें। रास्ते में शॉर्टकट का प्रयास ना करें क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है।
0: अपनी पूरी यात्रा के दौरान ऐसा कुछ भी ना करें जिससे यात्रा क्षेत्र में प्रदूषण हो या पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में प्लास्टिक के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध है और ये कानून के तहत दंडनीय है। वेस्ट मटेरियल को नजदीक के कूड़ेदान में ही फेंकें। सभी प्रकार के जैविक कचरे को हरे रंग के कूड़ेदान में ही डालना चाहिए।
2: श्रोताओं, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का विशेष यात्रा प्रसारण। मैं हूं फैजान कुरैशी। ये प्रसारण आप एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप के आराधना चैनल तथा डीटीएच के माध्यम से देश और विदेश तक प्रसारित किया जा रहा है। इस विशेष प्रसारण के दौरान हम आप तक श्री अमरनाथ जी यात्रा से जुड़ी हर महत्वपूर्ण पूर्ण और प्रमाणिक जानकारी पूछा रहे हैं। यात्रा मार्ग की वर्तमान स्थिति, मौसम के हाल के साथ साथ प्रशासन द्वारा जारी ताज़ा सूचनाओं से भी हम आपको लगातार अवगत कर रहे हैं। और इस दौरान हमने अपने संवाददाताओं से भी बात की और उन्होंने आपको इन्फॉर्मेशन दी कि यात्रा की सूरत हाल के हवाले से और मौसम और इस वक्त राष्ट्रीय राजमार्ग की क्या सूरत हाल है, उस हवाले से उन्होंने आपको इन्फॉर्म किया। और यात्रियों से गुजारिश है कि वो यात्रा के दौरान अपना यात्रा परमिट और पहचान पत्र हमेशा अपने साथ रखें क्योंकि मौसम में अचानक बदलाव हो सकता है, इसलिए रेनकोट और गर्म कपड़े साथ रखना न भूलें। और आप सभी से निवेदन है कि यात्रा के दौरान प्रशासन द्वारा जारी सभी निर्देशों का पालन करें क्योंकि सुरक्षित यात्रा ही सफल यात्रा है। आप सभी यात्रियों की सुरक्षा, स्वस्थ और मंगल यात्रा के लिए हमारी शुभकामनाएं।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
0: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
0: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्टपेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्रीपेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करेगा। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए, हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं, हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों।
0: किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए, इसके लिए आपको अपने समूह के किसी सदस्य जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं का नाम, पता और मोबाइल टेलीफोन नंबर का एक नोट अपनी जेब में जरूर रखें। साथ ही अपना यात्रा परमिट या कोई और पहचान पत्र भी अपने साथ रखें।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
0: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: उन स्थानों पर ना रुकें जो चेतावनी नोटिस द्वारा चिन्हित हैं। चप्पल का उपयोग ना करें क्योंकि पवित्र गुफा के मार्ग पर खड़ी चढ़ाई है। केवल फीते वाले ट्रैकिंग शूज ही पहनें। रास्ते में शॉर्टकट का प्रयास ना करें क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है।
0: अपनी पूरी यात्रा के दौरान ऐसा कुछ भी ना करें जिससे यात्रा क्षेत्र में प्रदूषण हो या पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में प्लास्टिक के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध है और ये कानून के तहत दंडनीय है। वेस्ट मटेरियल को नजदीक के कूड़ेदान में ही फेंकें। सभी प्रकार के जैविक कचरे को हरे रंग के कूड़ेदान में ही डालना

0: आप श्री अमरनाथ जी यात्रा का विशेष प्रसारण सुन रहे हैं। मैं हूं फैजान कुरैशी और अब अगली आवाज होगी मेरी सहयोगी सबरीना महराज की।
1: आप सुन रहे हैं अमरनाथ यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण। मैं हूं सबरीना महराज। यह प्रसारण आप एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज, डीटीएच और न्यूज ऑन एआईआर की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए।

0: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
1: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ रखें।

0: श्री अमरनाथ जी यात्रा का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज पर, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, डीटीएच और न्यूज ऑन एआईआर की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए। श्रोताओं, अब आपको ले चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली स्टूडियोज, जहां से आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले ढाई महीने में कई कदम उठाए गए हैं, दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
2: फास्ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे, विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का यह मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी, कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
1: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षाओं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक से संबंधित लंबित मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट्रैक कोर्ट के निर्णय की सराहना की है।
3: प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि पेपर लीक से संबंधित जो मामले अदालतों में लंबित हैं, चल रहे हैं, उनकी सुनवाई हम स्पेशली डेजिग्नेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके करवाएंगे, जिससे डे टू डे बेसिस पे सुनवाई होगी, स्पीडी ट्रायल होगा और टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होगा, तो युवाओं को न्याय मिलेगा।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार छात्रों के लिए न्याय सुनिश्चित करने और उनके भविष्य को खतरे में डालने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया में श्री सिंह ने कहा कि उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ कल रात गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भूख हड़ताल पर बैठे कार्यकर्ता सोना वांगचुक से मुलाकात की और छात्रों की चिंताओं पर विस्तार से चर्चा की, जिसके बाद उन्होंने अपनी भूख हड़ताल समाप्त करने का फैसला किया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के कारण बार बार बाधित हुई। दोपहर 12 बजे दोनों सदनों के फिर से शुरू होने पर विपक्षी दलों ने सदन को सुचारू रूप से न चलने

0: दिया, जिसके बाद लोकसभा को सोमवार 11 बजे तक और राज्यसभा को आज दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले दिन में 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर सदन ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सशस्त्र बलों के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के पटियाला जिला कार्यालय के एक प्रवर्तन अधिकारी को रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार किया है। सीबीआई के सूत्रों के अनुसार 22 जुलाई को एक शिकायत के आधार पर कार्रवाई की गई। सीबीआई ने आरोपी को शिकायतकर्ता से 2.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। प्रवर्तन निदेशालय ने आज दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब में 8 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। ये कार्रवाई एक कथित बैंक धोखाधड़ी से धन शोधन मामले के संबंध में की गई है। निदेशालय ने कहा है कि जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के उस मामले से संबंधित है, जिसमें लगभग 450 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी शामिल है। मामले की जांच जारी है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.3% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 248 अंक गिरकर 76,143 पर, जबकि निफ्टी 75 अंक गिरकर 23,795 पर पहुंच गया। भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अनाहत ने मिस्र की हबीबा रिस्क को हराया। अब सेमीफाइनल में अनाहत मिस्र की बाब समय से खेलेंगी। भारत ने कल हरारे में 3 मैचों की टी20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया। वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंदों में 50 रन की शानदार पारी खेली। भारत ने महज 14वें ओवर में 126 रन का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 125 रन बनाए। श्रृंखला का दूसरा मैच कल इसी मैदान पर खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi has said he has directed departments to prepare a proposal for fast-track courts to tackle paper leaks, and they worked continuously and submitted the draft late last night to him. In a video message last night, Mr. Modi said this draft, which includes provisions for fast-track courts and stringent punishment, will be discussed by the Cabinet today. He said after incorporating the suggestions of Cabinet colleagues, it will be given its final shape.
2: पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है, लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है। और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक वीत कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। सरकार ने अभी कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया।
1: The Lok Sabha has been adjourned till Monday as ruckus continued in the House for the fifth consecutive day today. When the House met after the first adjournment at 12 noon, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said the government is ready to discuss the NEET paper leak issue from day one. He said due to certain conditions being imposed by the Congress, the discussion has not been able to proceed. Mr. Rijiju said it is the collective sentiment of all the members that there should be a meaningful discussion on the issue. The minister said in the cabinet meeting today, decisions will be taken on strict measures and the introduction of a strong law to address this paper leak issue. Earlier, when the Lok Sabha assembled for the day at 11 a.m., the House paid tributes to the martyrs of the Indian Armed Forces who gave the supreme sacrifice during the Kargil War. The Rajya Sabha has also been adjourned till 2 p.m. over the NEET issue. When the House met after the first adjournment at 12 noon, Chairman C.P. Radhakrishnan tried to take up the question hour, but the opposition continued with their sloganeering, demanding the resignation of the Union Education Minister. The Delhi police has informed that 480 Pakistan-based social media handles involved in coordinated misinformation campaigns have been identified and blocked. Delhi Police DCP Sumit Jha said these social media handles were involved in spreading rumors and false

श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी यात्रा का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं। खराब मौसम और लगातार वर्षा के चलते प्रशासन ने अमरनाथ यात्रा को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। ये फैसला यात्रियों की सुरक्षा के लिए लिया गया है। सभी भोले के भक्तों से गुजारिश है कि वो बिल्कुल ना घबराए, जब तक मौसम साफ नहीं होता और रूट्स को सेफ नहीं डिक्लेयर किया जाता तब तक आगे का सफर ना करें।

0: श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी यात्रा का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज पर, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज और डीटीएच और न्यूज ऑन एआईआर की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए। अब आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली स्टूडियो, जहां से आप समाचार सुनेंगे।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं नीतिका त्यागी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक के वाकयात पर सख्त कार्रवाई के लिए कहा है। उन्होंने तेजी से काम करने वाली अदालतों और कसूरवारों को सख्त सजा देने की तजवीज से मुतालिक बिल को जल्द मंजूर कराने का यकीन दिलाया है। पार्लियामेंट में नीट पेपर लीक वाकयात पर हंगामा अब भी जारी है। लोकसभा की कार्रवाई अपोजिशन की तरफ से हंगामे की वजह से दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज और एनटीए को हिदायत दी है कि वो नीट यूजी पेपर लीक के बाद इस्लाहात पर अमल दरामद में पेशरफ्त से मुतालिक तफसीली हलफनामे दाखिल करे। भारत ने पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर में अवाम की आवाज़ को दबाए जाने को नज़रअंदाज करने पर अक्वामे मुत्तहिदा की मजम्मत की है। भारत ने पाकिस्तान पर अवाम के हकूक को मुनज़्ज़म तौर पर कुचलने का इल्ज़ाम आयद किया है। भारत के महकमाए मौसमियात ने मशरकी राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में आज बहुत शदीद से इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है और भारत की अनाहत सिंह आलमी जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में दाखिल हो गई हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्होंने महकमों से कहा था कि वो पेपर लीक के वाकयात से निमटने के लिए तेज रफ्तार अदालतें तश्कील देने के लिए एक तजवीज तैयार करें। उन्होंने कहा कि इन महकमों ने अनथक काम किया और उन्हें कल देर रात इसका मुसव्वदा पेश कर दिया गया। कल रात एक वीडियो पैगाम में जनाब मोदी ने कहा कि इस मुसव्वदे में तेजी से काम करने वाली अदालतों और सख्त सजाओं की शिकें तश्कील दी गई हैं। इस मुसव्वदे पर आज काबीना बहसो मुबाहिसा करेगी। उन्होंने कहा कि इस मुसव्वदे में काबीनी रुफका की तजवीज शामिल किए जाने के बाद ये मुसव्वदा कतई शक्ल इख्तियार कर लेगा। वजीर आजम ने कहा कि जब पीर को पार्लियामानी इजलास का दूसरा हफ्ता शुरू होगा, हुकूमत इस बिल को ऐवान में जल्द अज जल्द मंजूर कराने की कोशिश करेगी।
2: मैंने फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
1: बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट जगदम्बिका पाल ने आज कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस बात पर मुसलसल जोर दिया है कि तलबा के मफादात हुकूमत की अव्वलीन तरजीह हैं।

0: पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में आकाशवाणी से बात करते हुए चनाब पाल ने कहा कि हुकूमत ने इम्तिहान से मुतालिक बदउनवानियों के खिलाफ कार्रवाई को मुस्तहकम बनाने की गरज से एक कानून बनाने से मुतालिक अपने इरादे का ऐलान कर दिया है। दूसरी जानब बीजेपी के राज्यसभा के रुकने पार्लियामेंट राहुल सिन्हा ने आज कहा कि वजीर आजम मोदी नीट पेपर लीक मामले में कार्रवाई करने से मुतालिक अपनी यकीन दहानी को हर सूरत हाल में पूरा करेंगे। मरकजी वजीर कानून अर्जुन राम मेघवाल ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से खसूसी तौर पर नामजद तेजी से समाअत करने वाली अदालतें कायम करने के फैसले की सताइश की है ताकि पेपर लीक से मुतालिक जेरे इल्तवा केसों की समाअत की जा सके। मीडिया से बात करते हुए जनाब मेघवाल ने कहा कि तेजी से समाअत करने वाली ये अदालतें यौमिया बुनियाद पर इन केसों की समाअत करेंगी ताकि नौजवानों को इंसाफ फराहम हो सके।
1: प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि पेपर लीक से संबंधित जो मामले अदालतों में लंबित हैं, चल रहे हैं, उनकी सुनवाई हम स्पेशली डेजिग्नेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके करवाएंगे, जिससे डे टू डे बेसिस पे सुनवाई होगी, स्पीडी ट्रायल होगा और टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होगा, तो युवाओं को न्याय मिलेगा।
0: सरगर्म कारकुन सोनम वांगचुक ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में मरकजी वजरा जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में 26 दिन के बाद अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी। इससे पहले पार्लियामेंट के मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से वाबस्ता 65 अराकीन उनके पास आ चुके थे और उन खतों पर दस्तखत कर चुके थे जिनमें उनसे भूख हड़ताल खत्म करने की अपील की गई थी। हुकूमत ने सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने वाले उस वीडियो को खारिज कर दिया है जिसमें दावा किया गया है कि दिल्ली में एहतजाजी मुजाहिरों के दौरान एक तालिब इल्म की मौत हो गई है। वीडियो में ये इल्जाम भी लगाया गया है कि पुलिस ने इस तालिब इल्म की वालिदा की शिकायत पर एक FIR दर्ज करने से भी इनकार कर दिया। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के फैक्ट चेक यूनिट ने वजाहत की है कि यह दावा फर्जी है। यूनिट ने कहा है कि दिल्ली में एहतजाज से वाबस्ता कोई मौत नहीं हुई है और ये कि मस्कुरा खातून से मुतालिक वायरल वीडियो AI से बनाया गया डीप फेक है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। लोकसभा में आज लगातार पांचवें दिन शोरगुल जारी रहने के बाद ऐवान की कार्यवाही पीर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। आज पहली मर्तबा मुलतवी किए जाने के बाद दोपहर 12 बजे जब ऐवान की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि हुकूमत पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर बात करने के लिए तैयार है।
2: पार्लियामेंट हम लोग चर्चा नहीं करेंगे तो बिल्कुल अच्छा संदेश नहीं जाएगा। मैं राहुल गांधी जी से अनुरोध करता हूँ, आप अपने कांग्रेस पार्टी के साथियों को थोड़ा समझा दीजिए और बाकी कई पार्टी के MP भी निजी तौर पर सबने अपना मत रखा है कि चर्चा होना चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज पांचवा दिन है, हम इसमें एक अच्छा सार्थक बहस क्यों नहीं कर सकते हैं।
0: राज्यसभा की कार्यवाही भी नीट मामले पर हंगामे के सबब दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने आज मरकज और इम्तिहानात का इनेकाद कराने वाली कौमी एजेंसी NTA को हिदायत दी है कि वो नीट UG पेपर लीक के बाद की गई असलाहत पर अमल दरामद में जो पेशरफ्त हुई है उसके बारे में तफसीली हलफनामे दाखिल करे। जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराध्य पर मुश्तमिल एक बेंच ने नीट पेपर लीक केस की समाअत करते हुए कहा कि इस हलफनामे में उन इकदाम का लाजिमी तौर पर जिक्र किया जाए जो असलाहत को इदारा जाति बनाने के लिए किए गए हैं, न कि उन इकदाम का जिक्र किया जाए जो इस सिलसिले में आरजी तौर पर किए गए हैं। बेंच ने कहा कि वो इस मामले पर करीबी नजर रखे हुए है। भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जो मरकज की नुमाइंदगी कर रहे हैं कहा कि हुकूमत बच्चों के इन मामलों से निमटने के लिए काफी आगे तक कार्रवाई करने को तैयार है। भारत ने अक्वामे मुत्तहिदा से अफसोस जाहिर किया है कि वो पाकिस्तान में खासतौर पर उसके जेरे कब्जा कश्मीर में लोगों की आवाज दबाए जाने को नजरअंदाज कर रही है जबकि उसने दूसरी जगहों पर इस तरह के वाकयात की मजम्मत की है। भारत ने पाकिस्तान के जेरे कब्जा कश्मीर POK में अवाम के हकूक को मुनज्जम तौर पर कुचले जाने की मजम्मत की है। भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे P Harish ने पाकिस्तान के हाथों इंसानी हकूक की पामाली और मकबूजा कश्मीर नीज पूरे मुल्क में आजादी को कुचलने के वाकयात का जिक्र किया। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आज मशरकी राजस्थान गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में बहुत शदीद से इंतहाई शदीद बारिश के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे ने आइंदा 2 दिन तक हिमाचल प्रदेश कोंकण गोवा मध्य प्रदेश ओडिशा पंजाब सौराष्ट्र कच्छ और उत्तराखंड में भी शदीद बारिश की पेश

0: He today extended his best wishes to the Indian contingent who are participating in the Commonwealth Games in Glasgow, Scotland. In a social media post, Mr. Modi expressed confidence that Indian athletes will compete with passion, determination and a spirit of excellence. The Prime Minister said the skills and dedication of the country's athletes continue to inspire countless Indians. India's Anahat Singh has entered the semi-finals of World Junior Squash Championships after beating Egypt's Habiba Rizk 11-7, 11-5, 6-11, 11-9 in the quarter-finals. With this win, Anahat has become the first Indian to reach back-to-back semi-finals in the World Juniors and a firm favourite to win the title. Benchmark domestic equity indices pared their initial losses and were trading around 0.5% lower in afternoon trade today. The Sensex slipped 403 points to 75,989 and the Nifty fell by 116 points to 23,754. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi calls for strict action against paper leaks, assures early passage of bill for proposing fast-track courts and stricter punishments to culprits. Second round of talks between government and CJP begins at Constitution Club over NEET paper leak row. Showdown continues in Parliament over NEET paper leaks. Lok Sabha adjourned for the day amid opposition uproar. Supreme Court directs Centre and NTA to file detailed affidavits on progress made in implementing reforms after NEET UG paper leak. India calls out United Nations for ignoring repression in Pakistan-occupied Kashmir, accuses Islamabad for systematically crushing rights of the people. IMD forecasts very heavy to extremely heavy rainfall over East Rajasthan, Gujarat and Madhya Maharashtra today, and India's Anahat Singh enters semi-finals of World Junior Squash Championships. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा पेपर लीक घटना के बाद 2.5 महीने में दोषियों की गिरफ्तारी सहित कई कदम उठाए गए। नीट पेपर लीक मामले पर सरकार और सीजेपी के बीच नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दूसरे दौर की वार्ता जारी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के कारण सोमवार तक स्थगित। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को नीट पेपर लीक के बाद लागू किए गए सुधारों की प्रगति पर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में दमनकारी गतिविधियों को संयुक्त राष्ट्र द्वारा नजरअंदाज किए जाने पर निराशा व्यक्त की। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया और भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले 2.5 महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
2: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
1: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों के रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक से संबंधित लंबित मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के निर्णय की सराहना की है। श्री मेघवाल ने मीडिया से कहा कि इन अदालतों में मामलों की सुनवाई प्रतिदिन होगी।
3: प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि पेपर लीक से संबंधित जो मामले अदालतों में लंबित हैं, चल रहे हैं, उनकी सुनवाई हम स्पेशली डेजिग्नेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके

0: आएंगे, जैसे डे टू डे बेसिस पे सुनवाई होगी, स्पीडी ट्रायल होगा और टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होगा, तो युवाओं को न्याय मिलेगा।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की घोषणा को देश के शिक्षा प्रणाली के लिए मील का पत्थर बताया है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह तथा कई अन्य भाजपा नेताओं तथा कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दूसरे दौर की बातचीत जारी है। ये बैठक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर युवाओं के नेतृत्व में चल रहे विरोध प्रदर्शनों में हुए महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के बाद हो रही है। सीजेपी के प्रतिनिधियों सौरभ दास, आशुतोष रांका, अभिजीत दिपके और दीपक बलियान ने सरकार द्वारा उनकी दो शर्तों को स्वीकार करने के बाद वार्ता के लिए सहमति जताई है। ये शर्तें हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी और हाल में हुई परीक्षाओं में अनियमितताओं से प्रभावित विद्यार्थियों के परिवारों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाएगा। संसद के दोनों सदनों में आज लगातार पांचवें दिन नीट पेपर लीक के मुद्दे पर हंगामा जारी रहा। कई बार के स्थगन के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है।
2: पार्लियामेंट हम लोग चर्चा नहीं करेंगे तो बिल्कुल ऐसा संदेश नहीं जाएगा। मैं राहुल गांधी जी से अनुरोध करता हूँ, आप अपने कांग्रेस पार्टी के साथियों को थोड़ा समझा दीजिए और बाकी कई पार्टीज के एमपीज भी निजी तौर पर सबने अपना मत रखा है कि चर्चा होना चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज पांचवा दिन है, हम इसमें एक अच्छा सार्थक बहस क्यों नहीं कर सकते हैं।
1: सभापति जगदम्बिका पाल ने कहा कि विपक्ष को सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करना चाहिए। इससे पहले नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के बाद संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। दिन में 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला सहित सदन के सदस्यों ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सशस्त्र बलों के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
3: दिनांक 26 जुलाई 2026 को कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ है। ये सभा भारतीय सशस्त्र बलों के उन वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करती है जिन्होंने अत्यधिक दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों, विषम परिस्थितियों और प्रतिकूल मौसम की परवाह न करते हुए अद्वितीय वीरता और अटूट संकल्प का परिचय दिया।
1: करगिल शहीदों की याद में सदन में मौन भी रखा गया। उधर राज्यसभा की कार्यवाही भी इसी मुद्दे पर शोर शराबे के कारण सोमवार तक लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्ष ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर हंगामा जारी रखा। दिन में 11 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर सदन में करगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि करगिल विजय दिवस 1999 के करगिल युद्ध में भारत की विजय का स्मरणोत्सव है।
4: On this occasion, this house pays its respectable homage to the gallant martyrs who made the supreme sacrifice in service of the nation. We also express our profound gratitude to all the members of the armed forces.
1: राज्यसभा में भी शहीदों के सम्मान में मौन रखा गया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि जब तक शिक्षा मंत्री को पद से नहीं हटाया जाएगा, विपक्ष नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले पर किसी भी चर्चा में हिस्सा नहीं लेगा। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री गांधी ने कहा कि छात्रों की तीन प्रमुख मांगे हैं जिनमें शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी शामिल है। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में जवाबदेही तय करने की मांग की है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज नई दिल्ली सहित 18 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपद, झंडेवालान, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी, लेकिन नई दिल्ली स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। ये समाचार हमारे न्यूज

0: किया है कि वीडियो फर्जी है और एआई से बनाई गई है। इकाई ने बताया कि श्री गोयल ने प्रदर्शनों के संबंध में ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल लेफ्टिनेंट जनरल राजीव पुरी के एक वीडियो को लेकर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस वीडियो को फर्जी और डीप फेक बताया है। वीडियो में दावा किया गया है जो गलत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुरोध पर जनरल पुरी ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के विरोध प्रदर्शनों के बीच राजधानी में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती का आदेश दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने आज दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब में 8 स्थानों पर तलाश अभियान चलाया। ये कार्रवाई एक कथित बैंक धोखाधड़ी से धन शोधन मामले के संबंध में की गई है। चेन्नई के पास मधुरंथकम में आज एक सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। पुडुचेरी से चेन्नई जा रही एक कार की लॉरी से टक्कर के कारण ये दुर्घटना हुई। हादसे के समय पिता और पुत्र सहित 3 लोग चेन्नई हवाई अड्डे जा रहे थे। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की विश्व प्रसिद्ध बहुड़ा यात्रा जारी है। पहंडी अनुष्ठान पूरा हो चुका है और तीनों देवी देवताओं को विधिपूर्वक उनके अपने अपने रथों पर विराजमान कर दिया गया है। अन्य पारंपरिक अनुष्ठानों के संपन्न होने के बाद रथों को खींचने की प्रक्रिया शुरू होगी। एक रिपोर्ट।
1: भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की पहंडी रस्म सफलतापूर्वक पूरी हो गई है और इन भाई बहन देवताओं को बाहुड़ा यात्रा श्री जगन्नाथ मंदिर वापसी की शुभ यात्रा के लिए उनके रथों पर विधिवत विराजमान किया गया है। श्री गुंडीचा मंदिर से श्री जगन्नाथ मंदिर तक फैली पूरी ग्रांड रोड लाखों भक्तों से खचाखच भरी हुई है। वापसी की यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का रथ मौसी माँ मंदिर पर पारंपरिक रूप से रुकेगा, जहां भगवान को पोड़ो पीठा का भोग लगाया जाएगा। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भारत और रोमानिया के बीच आर्थिक और निवेश संबंधों को विस्तार देने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों में वाणिज्यिक सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। बुखारेस्ट में भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि प्रस्तावित भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता व्यापार, निवेश और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ावा देकर आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा।
2: India EU free trade agreement is an important milestone in India EU strategic partnership. Trade and economic cooperation are central to the contemporary partnership. With a combined market of nearly 2 billion people and an economic zone of around $25 trillion, the India EU FTA is among the most significant economic partnerships in the world.
0: भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित दमन के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रिया को लेकर निराशा जताई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने कहा कि कुछ मामलों में संयुक्त राष्ट्र की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया दी जाती है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसी घटनाओं पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जाता है। ये टिप्पणी पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश के बाद आई है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और दुनिया भर में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ गई है। ब्रेंट क्रूड की कीमतें मई के बाद पहली बार 100 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गईं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.5% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 403 अंक गिरकर 75,989, जबकि निफ्टी 116 अंक गिरकर 23,754 पर पहुंच गया। भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अनाहत ने मिस्र की हबीबा रिज़्क को हराया। अब सेमीफाइनल में अनाहत मिस्र की बार्ब समेह से खेलेंगी। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। गुजरात में पिछले 3 दिन से मूसलाधार वर्षा के कारण राज्य में जनजीवन अस्त व्यस्त है। एक रिपोर्ट।
3: दक्षिण गुजरात में 2 दिन तक भारी बारिश के बाद आज उत्तर गुजरात में भी भारी बारिश हो रही है। पिछले 6 घंटों में उत्तर गुजरात के वाओथरा और पाटन जिलों में 6 इंच से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। सुबह से अब तक राज्य के 200

0: 39 तहसील में बारिश हुई है। किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए अहमदाबाद, नवसारी और वलसाड में एनडीआरएफ एसडीआरएफ की कुल 49 टीमें और भारतीय सेना की 6 टीमें तैनात की गई है। दूसरी ओर राज्य में भारी बारिश के बीच राहत और बचाव का काम भी जोरों पर चल रहा है। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पेपर लीक घटना के बाद 2.5 महीने में दोषियों की गिरफ्तारी सहित कई कदम उठाए गए। नीट पेपर लीक मामले पर सरकार और सीजेपी के बीच नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दूसरे दौर की वार्ता जारी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के कारण सोमवार तक स्थगित। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को नीट पेपर लीक के बाद लागू किए गए सुधारों की प्रगति पर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए। और भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: श्रोताओं, आप दिल्ली से समाचार सुन रहे थे। श्री अमरनाथ जी यात्रा का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज, डीटीएच और न्यूज ऑन एआईआर की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए। श्रोताओं, अमरनाथ के इस विश्राम के समय अपनी सेहत का खास ख्याल रखना इंतहाई जरूरी है। खराब मौसम और लगातार वर्षा के चलते प्रशासन ने अमरनाथ यात्रा को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। ये फैसला यात्रियों की सुरक्षा के लिए लिया गया है। सभी भोले के भक्तों से गुजारिश है कि वो बिल्कुल ना घबराएं। जब तक मौसम साफ नहीं होता और रूट्स को सेफ डिक्लेयर नहीं किया जाता, तब तक आगे का सफर ना करें। और ठंडे मौसम में शरीर को गर्म रखें और स्वच्छ पानी का ही सेवन करें। एक विनम्र निवेदन है कि अमरनाथ जी का ये सुपुत्र पृथ्वी हमारा अपना धाम है, कैंप और आसपास के इलाके में कचरा ना फैलाए। प्लास्टिक और गंदगी को कैंप में बने डस्टबिन में ही डालें। स्वच्छता और सुरक्षा, यही है यात्रा की सच्ची भक्ति। आपकी यात्रा सुरक्षित, सुखद, सफल रहे।

0: श्रोताओं, अमरनाथ श्री अमरनाथ जी यात्रा का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, डीटीएच और न्यूज़ ऑन एआईआर की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता जावेद मेहराब। आइए सुनते हैं क्या कुछ अपडेट्स हैं उनके पास।
1: पहुंचे श्रद्धालु आज भी उम्मीद का दामन थामे हुए हैं। उन्हें उम्मीद है और भरोसा है कि जल्द ही मौसम साफ होगा और उन्हें बाबा बर्फानी के द्वार की तरफ जाने की इजाजत मिलेगी। इस बीच पवित्र श्री अमरनाथ जी के श्रद्धालु जम्मू में पहले निवास स्थान भगवती नगर में लगातार तेज बारिश के दरमियान बाबा बर्फानी के जयघोष लगाकर जोश और खरोश को बनाए हुए हैं। यहाँ श्रद्धालु भजन कीर्तन और भगवान शिव के नाम का जाप करते हुए समय बिता रहे हैं। उन्हें भरोसा है कि मौसम जल्द ही साफ होगा और यात्रा फिर से शुरू होगी। श्रद्धालुओं का कहना है कि मौसम खराब होने से यात्रा जरूर स्थगित हुई है, लेकिन बाबा बर्फानी के स्थान तक पहुंचने का उनका संकल्प पूरी तरह से मजबूत है और जल्द ही प्रशासन की अनुमति मिलेगी और वो पवित्र गुफा की तरफ उसी जोश जज्बे के साथ रवाना होंगे। पवित्र श्री अमरनाथ जी यात्रा का संचालन पूरी तरह से मौसम की परिस्थितियों पर निर्भर रहेगा। भारी बारिश के मद्देनजर उपराज्यपाल ने कल श्रीनगर में एक समीक्षा बैठक में कहा कि अभी तक 3,91,000 श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन कर लिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भारी बारिश के मद्देनजर यात्रा मार्गों से तत्काल मलबा हटाने और बाढ़ सुरक्षित उपायों को मजबूत किया जाए, साथ ही 24 घंटों पर प्रबंधन को और व्यवस्था को सक्रिय रखने और यात्रा मार्गों की सफाई स्वच्छता को नियमित करने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राशन एलपीजी का पर्याप्त भंडार सुनिश्चित किया जाना चाहिए और उसी तरह से यात्रा के मार्गों पर बिना रजिस्ट्रेशन वाले सेवा प्रदाताओं पर रोक लगाने के भी निर्देश दिए तथा सभी सेवाओं के लिए 100% प्रीपेड व्यवस्था लागू करने के निर्देश भी उपराज्यपाल ने दिए। बैठक में सभी उच्च अधिकारी, पुलिस, फौज, श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के मुख्य अधिकारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर उपराज्यपाल ने एजेंसियों को के प्रयासों की सराहना की, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना प्रशासन, सुरक्षा बल, श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड, सेवा प्रदाता सेवम और स्वयं सेवी संस्थाएं को सराहते हुए कहा कि सभी की समावित प्रयासों से श्री अमरनाथ जी यात्रा सुरक्षित और सफलता के साथ संचालित हो रही है। वहीं यहाँ कल दिन भर बारिश के होते हुए शाम होते हुए बारिश में कुछ कमी जरूर हुई, लेकिन जम्मू संभाग के पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश से तवी नदी का जल स्तर बढ़ने की आशंका को लेकर जिला प्रशासन की तवी नदी के तट के नजदीक निचले इलाकों से लोगों को निकाल दिया गया, जिससे प्रशासन पूरी तरह से इस काम में लगे हुए है कि स्थानीय लोगों को सुरक्षित निकाला जाए। वहीं कल नगर निगम ने तवी रिवर फ्रंट पर बने श्रद्धालुओं के शिविर में जमा पानी को सफलतापूर्वक निकाला गया। नगर निगम के आयुक्त दीवान यादव के निर्देश पर टीम ने मौके पर पहुंचकर डीवाटरिंग का कार्य पूरा किया। कल समीक्षा बैठक में नगर निगम ने तमाम जल भराव की जगहों से पानी निकाले जाने के आदेश दिए। इसमें तवी रिवर फ्रंट को पहली प्राथमिकता देते हुए यहां से पानी निकाल दिया गया। इस दौरान जल भराव वाले सभी स्थानों पर लगातार निगरानी के निर्देश हैं और आवश्यकता पड़ने पर तुरंत कार्रवाई की उम्मीद भी है। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगातार हो रही बारिश से भूस्खलन के भी वाकात सामने आए हैं, जिससे जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो पूरी तरह से बंद है और उधमपुर में ट्रकों की लंबी कतारें मौजूद हैं जो घाटी की ओर जाना चाहती हैं, लेकिन पूरा राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से बंद है। खबर है कि कश्मीर के पूरे जिलों में भी वर्षा लगातार हो रही है, जिसकी वजह से स्थिति जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से अधिकारियों के कंट्रोल में है। उम्मीद है जल्द ही मौसम साफ होगा और पवित्र श्री अमरनाथ जी के तीर्थयात्रियों को दोबारा घाटी जाने की इजाज़त मिलेगी।
0: धन्यवाद आपका। श्रोताओं, ये थे हमारे साथ जम्मू से हमारी संवाददाता जावेद मेहराब।

0: श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी यात्रा का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, डीटीएच और न्यूज ऑन एआईआर की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए। हमारे साथ जुड़ चुके हैं बानिहल से हमारे संवाददाता मोहम्मद तस्कीन। आइए सुनते हैं क्या कुछ अपडेट्स हैं उनके पास। जी मोहम्मद तस्कीन, बताइए।
1: जी शुक्रिया। जो कल से बारिशें शुरू हुई थी, बारिशें चल रही थी, मुसलसल बारिशों का सिलसिला था
0: जी।
1: आज करीबन एक घंटा पहले से बारिशें थम गई हैं और जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है, 270 किलोमीटर लंबी जो राष्ट्रीय राजमार्ग है जम्मू से श्रीनगर तक, ये करीबन एक दर्जन से के मुकामात पर बंद हुई है शूटिंग स्टोन्स और स्लाइडिंग की वजह से। और अब जो मौसम में बेहतरी आई है तो इसका जो रेस्टोरेशन का काम है वो शुरू किया गया है। उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में भी अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है हाईवे को। और उसके बाद जो रामबन डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, बानहाल और रामबन के दर में, इसमें भी करीबन 8 दर्जन से जायद मुकामात है जहां पर हाईवे को मतलब डैमेज हुआ है, हाईवे पर स्लाइडिंग हुई है, पत्थर गिरे हैं जिनमें मिहाड़ है, केला मोड़ है, पीड़ा है, पीड़ा के टनल के पास स्लाइडिंग हुई, त्रिशूल मोड़ है, सेरी मंकी मोड़ बैटरी चश्मा है, मारोग है, अनोखी फाल है, हिंगनी हो, और यहाँ शेर बीबी का कश्तवाड़ी पत्थर का इलाका है जहाँ पर स्लाइडिंग हुई है। तो अभी फिलहाल मौसम थम

0: बारिशें थम गई हैं और जो रेस्टोरेशन का काम है वो शुरू किया गया है, और उम्मीद है कि अगर बारिशें मजीद ना हुई तो आइंदा 2-3 घंटों में उम्मीद है कि जो एक लेन को कम से कम, मतलब ये जो रेस्टोरेशन जो है पार्शियली रेस्टोरेशन, उसके इम्कानात हैं। और इसमें ट्रैफिक पुलिस का भी कहना है कि बारिशें थमने का इंतजार किया जा रहा था, और जो मशीनरी है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वो जगह जगह पर तैयार है और काम भी कर रही है। और अब बारिशें थमने के बाद इसकी उम्मीद है कि ये मतलब रेस्टोरेशन का काम जल्द अज जल्द किया जाएगा, तो इसके लिए काम चल रहा है। फिलहाल जो ट्रैफिक है बिल्कुल बंद है, आज किसी भी किस्म का आज तीसरा दिन है हाईवे का, हाईवे मुसलसल बंद है, जबकि श्री अमरनाथ यात्रा आज 5वें रोज भी, 6ठे रोज भी बंद रही, क्योंकि उसे 19 तारीख से बंद कर दिया गया है। और आज तक जो मौसम का जो पेशन गोई था वो 23 था, आज 24 तारीख है, तो आज भी बारिशें हुई और कल रात से ही, देर रात से शुरू हुई थी और आज दोपहर बाद तक ये जारी रहे, और अब बारिशें थम गई हैं और उम्मीद है कि ये जो ट्रैफिक है जो उसे रेस्टोर किया जाएगा, हाईवे रेस्टोर की जाएगी, तो इसके लिए जो काम है बड़े जंगी बुनियादों पर जारी है, और उम्मीद है कि आइंदा 2-3 घंटों में कुछ ना कुछ ब्रेक थ्रू आएगा नेशनल हाईवे के हवाले से।
1: जी, आप हमें ये बताएं कि हमारे जो श्री अमरनाथ जी यात्रा है उनके लिए सुरक्षा कर्मी जो हैं वो उनके लिए क्या खास ख्याल रखा जा रहा है उनकी तरफ से?
0: देखिए सिक्योरिटी तो बहुत मतलब आला तरह की सिक्योरिटी है जो इनके लिए रखी गई है। जो श्री अमरनाथ यात्री अगर इस रामबन डिस्ट्रिक्ट में कहेंगे तो कुछ यात्री अभी भी ठहरे हुए हैं यहाँ पर यात्रा निवास चंद्रकूट में, और उसके बाद बानहाल में भी, जो पिछले 19 तारीख से रोके गए हैं यहाँ पर मौसमी खराबी की वजह से, तो वो अभी रुके हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब हाईवे खुले और उन्हें चलने की इजाजत दी जाएगी, पवित्र गुफा की तरफ जाने की इजाजत दी जाएगी। सिक्योरिटी का आला इंतजाम है, पुलिस है, सीआरपीएफ है, और आर्मी का बाजाब्ता तौर पर जो निगरानी है, जो इनकी सिक्योरिटी का कवर है वो बरकरार है, और मौसम की बेहतरी का इंतजार किया जा रहा है, और मौसम बेहतर होना शुरू हो गया है। अगर मौसम बेहतर हुआ तो कोई ना कोई डिसीजन आएगा इस बारे में कल तक की यात्रा के हवाले से क्या करना है, क्या यात्रा को दोबारा रिज्यूम किया जाएगा, तो उसके बारे में अब हमें शाम देर तक या सुबह तक इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल जो है हाईवे पर जो काम है वो बड़े तेजी के साथ किया जा रहा है, और उम्मीद है कि जो श्री अमरनाथ यात्री यहाँ फंसे हुए हैं, जो दरमांदा है और इंतजार कर रहे हैं कि वो पवित्र गुफा की तरफ जाएं दर्शन के लिए, तो उनके लिए भी एक खुशखबरी आने वाली है, और उम्मीद है कि आज शाम तक या सुबह तक इस बारे में हुक्काम की तरफ से फैसला लिया जाएगा। बाकी रहा जो सिक्योरिटी का कवर है वो बरकरार है, सिक्योरिटी पूरी तरह से लगी हुई है, पहले दिन से ही जब श्री अमरनाथ यात्रा शुरू हुई थी 2 जुलाई को, तो तब से अब तक उसमें कोई कमी नहीं है, बरकरार है सिक्योरिटी का, जो सिक्योरिटी सेटअप रखा गया है बहुत आला किस्म का है, और जहां पर भी ये लंगर साइट से या यहाँ पर जो लंगर साइट से चंद्रकूट और बानहाल में दोनों जगहों पर बाजाबता तौर पर कैंप से सिक्योरिटी के फोर्सेस को रखा गया है, सीआरपीएफ को खासकर, सीआईएसएफ को रखा गया है, इसलिए सिक्योरिटी का मतलब आला इंतजाम है उसमें, वो कोई मतलब किसी किस्म की कमी नहीं आई है। हालांकि हाईवे बंद होने के बावजूद भी इस पर बराबर जो है सिक्योरिटी का जो कवर है उसे हटाया नहीं गया बल्कि बरकरार रखा गया है।
1: जी बिल्कुल, धन्यवाद आपका। तो श्रोताओं, ये थे हमारे साथ बानिहाल से हमारे संवाददाता मोहम्मद तस्कीन। आप श्री अमरनाथ जी यात्रा का ये विशेष प्रसारण सुन रहे हैं एफएम बालतल 103.7 MHz, एफएम पहलगाम 100.1 MHz, डीटीएच और न्यूज ऑन एयर की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए। जैसे कि खराब मौसम और लगातार वर्षा के चलते प्रशासन ने अमरनाथ यात्रा को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। यह फैसला यात्रियों की सुरक्षा के लिए लिया गया है। सभी बोले के वक्त उसे गुजारिश है कि वो बिल्कुल ना घबराए जब तक मौसम साफ नहीं होता और रूट्स को सेफ नहीं डिक्लेयर किया जाता, तब तक आगे का सफर ना करें। श्री अमरनाथ के इस विश्राम के समय अपनी सेहत का खास ख्याल रखना इंतहाई जरूरी है। ठंडे मौसम में

जी तारिक साहब, तारिक साहब। श्रोताओं, शायद इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम लगातार कोशिश करेंगे इनसे संपर्क करने की। तब तक आप बने रहें हमारे साथ।

0: बड़े बारिश का इम्कान भी नहीं है। ये वक्त कम अज कम आज रात 12 बजे तक बरकरार रहने का इम्कान है। आइंदा 2 रोज के दौरान मुख्तलिफ मकाम पर वक्ते से हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। तहम मुसलसल पूरा दिन जारी रहने वाली शदीद बारिशों की तवक्का नहीं है। मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए ये कहा जा सकता है की बड़े सैलाब का खतरा बड़े हद तक फैल चुका है। ये थी तो हमें इतना मिली थी महकमा मौसमियात की जानब से। तो बारिशों के बीच में इस समय पैगाम का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो शाम तक 14 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है। बताओ, जैसे कि आप जानते हैं कि बिगड़ते हुए मौसम और यात्रा मार्ग पर अर्पण स्थिति को देखते हुए श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को मद्देनजर के लिए अमरनाथ की यात्रा आज लगातार छठे दिन भी आर्थिक रूप से निलंबित रखी गई है। जैसा यात्रा प्रशासन भारतीय मुख्य विभाग की पेशगोई और यात्रा मार्ग की वर्तमान स्थिति का आंकलन करने के बाद लिया जाएगा। इसके तहत आज भी हनुमान चंदनवाड़ी और जम्मू के भगवती नगर आधार शोरूम से किसी भी श्रद्धालुओं को पवित्र गुफा के और आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी गई। जैसे ही मौसम में सुधार आएगा, यात्रा मार्ग को पूरी तरह से सुरक्षित करार दिया जाएगा। श्री अमरनाथ की यात्रा को पुण्य आरम्भ कर दिया जाएगा। तो मैं आपको ये चीज भी बता दूं कि इधर दरिया ने जहलिम के बारे में जब बात करें तो क्योंकि ये इस वक्त जो हमारी जो यात्रा है जो मौसम की बुनियाद पे रोक दी गई है, तो तीन के स्थानों पर जल स्तर कहीं चेतावनी रेखा से ऊपर बना हुआ था और कहीं इसमें कमी भी दर्ज की जा रही है। अब अगर हम आज दोपहर गैज रिकॉर्डिंग पे रीडिंग पे रोशदर्शी डाले तो पहलगाम के नजरनाला बटकूट में जलस्तर 1.8 मीटर दर्ज किया गया है
1: जी,
0: जो इंतहाई और खतरे के हद से नीचे है और वहाँ पानी की सतह में कमी आ रही है। इसी तरह दरिया जहलम की संगम गई जो पूरे हमारे दक्षिणी कश्मीर के साथ मुंसलिक है, इस गैज के प्रशासन ने जल स्तर इस वक्त 19.6 फुट रिकॉर्ड किया गया है, जहाँ पानी की सतह में कमी दर्ज की जा रही है। महापौर में जल स्तर 5.6 मीटर तक पहुंच गया, जो इंतहाई और खतरे के हद से ऊपर था और वहाँ पानी की सतह में इजाफा भी था, जो शाम तक नीचे जा सकता है और क्योंकि पानी के बहाव में अब जो वक्फा आ गया है। राम मुंशीबाग श्रीनगर जिसका बिल्कुल निर्माण हमारे पूरे जहाजी पे होता है, जहाजी का जल स्तर 18.52 फुट दर्ज किया गया है, जो इंतहाई रेखा से ऊपर था और पानी की सतह में ठहराव आ चुका है। विश्वनाला खुड़वनी में भी जल स्तर 7.11 मीटर दर्ज किया गया था, जहां पानी की सतह में कमी आ रही है, जबकि रंबी आरा नाला मची में जल स्तर 2.2 मीटर रिकॉर्ड किया गया और वहां भी पानी की सतह घट रही है। इधर जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो

0: है कि स्थानियों पे से बसें आकर कर कारण यातायात फिलहाल रोक दी गई है। ट्रैफिक विभाग ने पहले दिवस यही सभी यात्रियों और आम नागरिकों से भी अनुरोध किया था कि वो खराब मौसम के मद्देनजर सफर पर निकलने से पहले मौसम और ट्रैफिक की ताजा जानकारी अवश्य हासिल करें और इसी के अनुसार अपना सफर निर्धारित करें। आशा है कि मौसम में जल्दी ही सुधार आएगा, यात्रा मार्ग पर फिर से सुरक्षित घोषित होगा और अमरेश्वर के पुनर्द धरती एक बार फिर बाबा महादेव के नारों से जो खुश गूंज उठे। यात्रा अगर बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए ये जो यात्री हमारे जो अभी ठहरे हुए हैं आधार शिविर में जिनकी तादाद तकरीबन 8,000 हो चुकी है और उसके अलावा भी जो बाकी होटलों में या हटों में रुके हुए लोग हैं तो उनके बारे में अगर बात करें तो उनकी जो दर्शन के लिए तो उत्सुक है तथा वो प्रशासन के निर्देशों का पूर्ण सबर संयम और अनुशासन के साथ पालन कर रहे हैं। वो यात्रा के पुण्य आरम्भ होने के अधिक का घोषणा का शांति पूर्ण इंतजार कर रहे हैं जो एक सबसे अच्छी बात है क्योंकि उनके जो वहाँ बैठने के बाद उनके रुकने के बाद जो उनके जो इंतजाम है जो उनके लिए जो यात्रा इंतजामिया ने इंतजाम रखा है उनमें कोई परेशानी नहीं है, उनमें कोई कमी नहीं है। वो बिल्कुल आराम से वहाँ इस माहौल में बैठे जैसे किसी मेले में बैठे हैं जैसे किसी अपने ही घर में बैठे हैं।
1: जी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका तारिक साहब। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता तारिक साहब। हम भी यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द अमरनाथ यात्रा जी बहाल हो जाए।

श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी यात्रा का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल, एफएम पहलगाम चैनल के जरिए। श्रोताओं, हम जानते हैं क्या आप पवित्र गुफा के दर्शन के लिए उत्सुक हैं, लेकिन खराब मौसम और सुरक्षा के पेश नज़र यात्रा कुछ समय के लिए रोकी गई है। आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। बालतल और नुनवन बेस कैंप्स में प्रशासन और सेवा समितियों की तरफ से आपके लिए गर्म भोजन और पीने का स्वच्छ जल और तिबी सहूलियात का पूरा प्रबंध मौजूद है, और बराह करम कैंप अधिकारियों के निर्देशों का पालन करें और सुरक्षित रहे। आपका सब्र ही आपकी यात्रा को सफल बनाएगा।

0: श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी यात्रा का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज, डीटीएच और न्यूज ऑन एआईआर की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए। श्रोताओं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्रीनगर से हमारे साथ संवाददाता इमरान नायकू। आइए सुनते हैं क्या कुछ अपडेट्स हैं इनके पास। जी इमरान साहब।
1: जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि कश्मीर वैली में पिछले कई दिनों से मूसलाधार बारिशें या हैवी रेनफॉल हुई है और आज भी सुबह से यहाँ श्रीनगर में बारिश हो रही थी, लेकिन इस वक्त जो है मौसम अब आहिस्ता आहिस्ता साजगार होता जा रहा है, यानी मौसम अब बेहतर होता जा रहा है और इस वक्त श्रीनगर सिटी में धूप खिली है और मौसम में बेहतरी आनी शुरू हुई है। और साथ ही जो मौसम विभाग की तरफ से पहले से ही ये जो प्रेडिक्शन दी गई थी, जो पेशन गोई की गई थी कि अगले 72 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में मौसम में बेहतरी आएगी और खासकर आज दोपहर से यह पहले कहा गया था कि मौसम जो है वो बेहतर होगा, तो इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि अब मौसम में बेहतरी आनी शुरू हुई है। और खासकर श्रीनगर सिटी की मैं बात करूं तो यहाँ शहर में इस वक्त धूप खिली हुई है और मौसम बेहतर होना शुरू हो चुका है। साथ साथ जैसे कि हम जानते हैं कि फिलहाल मौसम खराब होने की वजह से अमरनाथ जी यात्रा को सस्पेंड किया गया है, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि मौसम बहुत जल्द साफ हो और दोबारा से अमरनाथ जी यात्रा रिज्यूम हो, शुरू हो जाए। और कई सारे अभी यात्री यहाँ कश्मीर के मुख्तलिफ ट्रांजिट कैंपस में है, जैसे कि श्रीनगर के पांथा चौक ट्रांजिट कैंप में भी कई सारे यात्री पिछले कई दिनों से है जो अमरनाथ यात्रा के लिए यहाँ कश्मीर वैली आए हैं, तो मौसम बेहतर होते ही उनको अमरनाथ जी यात्रा के लिए रवाना किया जाएगा। लेकिन साथ साथ यहाँ पर यात्रियों के लिए, ना सिर्फ इन यात्रियों के लिए जो यहाँ पे रुके हुए हैं, गवर्नमेंट की तरफ से सुविधाएं रखी गई है, अरेंजमेंट्स किए गए हैं, हर तरह की जो बेसिक फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड की जा रही है, बल्कि जो यात्री और अगले दिनों में आने वाले हैं या अभी जितने भी दिन यात्रा के बचे हैं तो उनके लिए जो यात्री यहाँ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आएंगे तो उनके लिए यहाँ हर तरह की जो सुविधाएं हैं, चाहे वो खाने पीने के लिए लंगर्स हों, यहाँ पे वो ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी हो, यहाँ पर हेल्थ की फैसिलिटी हो या फिर सैनिटेशन, बाकी जितनी भी यहाँ अरेंजमेंट्स है वो गवर्नमेंट ने पहले ही से ही इंश्योर करके रखे हैं। और साथ साथ सिक्योरिटी जैसे कि हम देख रहे हैं कि उसको भी यात्रा से कबल ही या पहले ही इंश्योर किया गया था, उसके भी सख्त तरीन यहाँ पर अरेंजमेंट से या बंदोबस्त किए गए हैं। और साथ जैसे आप भी जानते हैं कि कल LG मनोज सिन्हा साहब की तरफ से यहाँ श्रीनगर में एक हाई लेवल उन्होंने मीटिंग भी ली और जिस मीटिंग में श्राइन बोर्ड, जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी इंटेलिजेंस एजेंसियों और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के जो आला अधिकारी या आला जो ऑफिशियल्स हैं वो मौजूद थे और उसमें भी LG साहब ने उनको डायरेक्शंस दी है कि यात्रा की समूथ के लिए आप राउंड क्लॉक इस पे प्रोएक्टिव रहें और यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो। और साथ उन्होंने कहा है कि मौसम बेहतर होते ही यात्रा को दोबारा से रिज्यूम किया जाएगा। और इस सिलसिले में हम देख रहे हैं कि चाहे वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर सिक्योरिटी एजेंसीज हो या फिर यहाँ की जितने भी गवर्नमेंट के इदारे हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो काफी प्रोएक्टिव है राउंड द क्लॉक, यहाँ पर वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, तो उम्मीद ये की जा रही है कि यात्रा बहुत जल्द जो है दोबारा से शुरू हो जाए, मौसम में बेहतरी हो। और खासकर जैसे अच्छी बात इस वक्त ये है कि श्रीनगर में धूप खिली है, निकली है और मौसम बेहतर होता जा रहा है। और साथ साथ लोक भवन जो कि LG ऑफिस भी कहा जाता है, वहां से श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की तरफ से जो मॉनिटरिंग सेल एस्टेब्लिश किया गया है वहां से भी पूरी यात्रा को मॉनिटर किया जा रहा है। इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर जो HMT में एस्टेब्लिश किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से।
0: श्रोताओं, इनसे संपर्क टूट गया है तो लगातार हम इनसे फिर से एक बार संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप ये विशेष प्रसारण सुन रहे हैं।

0: श्रोताओं, हमने इमरान साहब से फिर एक बार संपर्क करने की कोशिश की है। जी इमरान नायकू साहब, बताइए आप क्या कह रहे थे।
1: जी बिल्कुल, जैसे मैं अपडेट कर रहा था कि इस यात्रा को मॉनिटर किया जा रहा है इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर HMT श्रीनगर से, और जितने भी यात्रा के जो पवित्र गुफा तक जाने वाले रास्ते हैं वहां जहां जहां पर ट्रांजिट कैंप्स कायम किए गए हैं, जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से कश्मीर तक पूरी इस यात्रा को मॉनिटर किया जा रहा है, और डिफरेंट जो गवर्नमेंट के मोर देन 25 डिपार्टमेंट्स के जो लोग हैं वो यहां पर इस यात्रा को मॉनिटर के जरिए से अपनी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जो यात्री अभी तक यात्रा कर चुके हैं, जैसे कलाल जी साहब ने भी कहा है कि 4 लाख के करीब अमरनाथ जी यात्रियों ने इस साल अभी तक पवित्र गुफा का दर्शन किया है, और बड़े स्मूथली इस साल अभी तक यात्रा रही है, और अनफॉर्चुनेटली मौसम खराब होने की वजह से फिलहाल ये सस्पेंड है, लेकिन जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि मौसम बेहतर होते ही यात्रा को दोबारा से रिज्यूम किया जाएगा। लेकिन जिन यात्रियों ने अभी तक पवित्र गुफा का इस साल दर्शन किया है, और कई सारे यात्रियों से हमारी बात भी हुई है अरेंजमेंट्स को लेके, या बाकी जो सुविधा है सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से यात्रियों के लिए रखी गई थी या है, तो उनका सबका मानना है कि हर साल एक नई जो है इसमें इम्प्रूवमेंट लाई जा रही है, बेहतरी लाई जा रही है, खासकर जो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO की तरफ से जो ट्रैक्स को डेवलप किया गया है, या फिर अलग अलग ट्रांजिट कैंप्स में इसको इसमें गवर्नमेंट की तरफ से खास अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं, तो उनको लेके वो अपना एक पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं, और साथ ही इत्मीनान का इजहार या खुशी का इजहार भी कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल हम यूं कहें कि यात्रियों की अभी तक जो यात्रा है वो बड़े पीसफुल तरीके से और खुश उसलूबी के साथ जारी है, लेकिन अब सिर्फ इंतजार उस घड़ी का है कि मौसम बेहतर हो और दोबारा से हमारे यात्री यहाँ पहुंचे और पवित्र गुफा के दर्शन के लिए उनको यहाँ से भेजा जाए।
0: धन्यवाद इमरान नायकू साहब, धन्यवाद। तो ये थे श्रोताओं हमारे साथ श्रीनगर से हमारे संवाददाता इमरान नायकू। अमरनाथ श्री अमरनाथ जी यात्रा का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz पर, DTH और न्यूज ऑन AIR की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए, हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं, हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों।
0: किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए, इसके लिए आपको अपने समूह के किसी सदस्य जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं का नाम, पता और मोबाइल टेलीफोन नंबर का एक नोट अपनी जेब में जरूर रखें। साथ ही अपना यात्रा परमिट या कोई और पहचान पत्र भी अपने साथ रखें। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए, हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं, हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों।
0: किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए, इसके लिए आपको अपने समूह के किसी सदस्य जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं का नाम, पता और मोबाइल टेलीफोन नंबर का एक नोट

0: अपनी जेब में जरूर रखें। साथ ही अपना यात्रा परमिट या कोई और पहचान पत्र भी अपने साथ रखें।
1: जय जय बाबा बर्फानी।
0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।

0: श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी यात्रा का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज, डीटीएच और न्यूज ऑन एआईआर की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए। श्रोताओं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं गांधरबल से हमारे संवाददाता रिजवान साहब। आइए सुनते हैं क्या कुछ अपडेट्स हैं इनके पास। रहीम रिजवान साहब जी,
1: बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका और श्रोताओं को। हम ये बताना चाहते हैं कि आज छठे रोज बालतल के मुख्य मार्ग से यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि यात्रियों की सुरक्षा जिला प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण है। लिहाजा जो बालतल मुख्य मार्ग से दुमेल कंट्रोल गेट से पवित्र गुफा तक 14 किलोमीटर का कठिन रास्ता उन्हें तय करना पड़ है और इस ट्रैक पर फिसलन पैदा हुई है वर्षा के कारण। आपको ये भी बताते चलें कि गुज़श्ता कई दिनों से जो भारी वर्षा घाटी में हो रही है उसके कारण सैलाबी सूरज हाल चारों ओर पैदा हो चुकी है और इसके साथ जो बालतल मुख्य मार्ग से बालतल बेस कैंप से पवित्र गुफा तक का जो ट्रैक है, अगरचे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन RCC 122 ने इस ट्रैक की कुशादगी की है और इसको काबिल आमदोरफ्त बनाया गया है और जिस पर आसानी से हमारे घोड़े वाले, पौने वाले जो हैं, पालकी वाले या डांडी वाले यात्रियों को पवित्र गुफा की ओर सुरक्षित ले जाते हैं और जहां वो शिवलिंगम का दर्शन करके सुरक्षित वापस बालतल बेस कैंप पहुंच रहे हैं। तो इस दौरान यात्रा पे जो वर्षा हुई है गुज़श्ता कई दिनों के दौरान लगातार, इससे यात्रा ट्रैक पे फिसलन पैदा हुई है जहां अब यात्रियों को चलना मुश्किल ही नहीं बल्कि महाल होगा। तो इस तरह की स्थिति बनी हुई है बालतल के पूरे क्षेत्र में, जो हम बार बार अपने श्रोताओं तक पहुंचाना चाहते हैं और उन्हें ये भी कहना चाहते हैं कि यात्रा रूट जो है वो कठिन रास्ता है, लिहाजा वो अपने साथ यात्रा के दौरान रेनकोट साथ रखना ना भूलें और वो प्रशासन का इंतजार करें और प्रशासन के साथ कोऑपरेट करें, क्योंकि जिला प्रशासन के द्वारा आज भी बार बार उनसे अपील की जाती है। इसके साथ साथ जो सूबाई इंतजाम है उनकी जानिब से उनको ये अपील की जाती है कि वो बाज़ाब्ता तौर इनके साथ कोऑपरेट करें, बिना पंजीकरण किए बगैर घाटी की तरफ रुख ना करें, क्योंकि उससे यहाँ प्रशासन जो है उनको भी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है और साथ ही जो यात्री हैं उन्हें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बिना पंजीकरण किसी भी यात्री को RFID कार्ड फराहम नहीं किया जाता है। लिहाजा बिना RFID कार्ड कोई भी यात्री पवित्र गुफा की ओर रवाना नहीं हो सकता है, लिहाजा उन्हें बालतल बेस कैंप से ही वापस लौटना पड़ेगा बिना दर्शन किए। और इस तरह जो हम कह सकते हैं हमारे यात्रियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और ना ही जब वो वापस आते श्रीनगर कारगिल राजमार्ग पर सफर करते हैं, तो इस दौरान हमारे दो महत्वपूर्ण पड़ाव हैं जो हम बार बार अपने श्रोताओं को बताना चाहते हैं, वो है ट्रांजिट कैंप शादीपोरा और ट्रांजिट कैंप मैनगाम। तो इन दोनों ट्रांजिट कैंपों में 5 बजे के बाद यहाँ पहुंचने वाले तमाम श्रद्धालुओं को यहाँ रात भर रुकना पड़ता है, जहाँ जिला प्रशासन ने यात्रियों की सहायता के लिए उच्च स्तर की सुविधाएं

0: उपलब्ध रखी है। भोजन, पानी, बिजली तथा विश्राम का के लिए उम्दा बेडिंग का बाजाबता तौर इंतजाम किया गया है और जिसकी निगरानी बाजाबता तौर जिले और जिला प्रशासन के अफसर, सिविल और पुलिस के आला अफसर कर रहे हैं। जबकि बालतल बेस कैंप से पवित्र गुफा तक किस तरह की स्थिति बनी हुई है इसकी निगरानी डिप्टी कमिश्नर गांधरबल जैटिन किशोर कर रहे हैं। और सुरक्षा के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो बाजाबता तौर इसकी निगरानी SSP गांधरबल सुधांशु धामा कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम ट्रांजिट कैंप मणिगांव की बात करेंगे तो यहाँ SP आबिद रशीद मीर बाजाबता तौर सुरक्षा जो है उसकी निगरानी कर रहे हैं। और यहाँ जो यात्रा नोडल अफसर है वो है ACR गांधरबल डॉक्टर शेख सलाहुद्दीन, तो उसकी निगरानी में सब कुछ यहाँ पे हो रहा है। तो जिला प्रशासन ने बाजाबता तौर यात्रियों के लिए तमाम तर सुविधाएं जो है वो उपलब्ध रखी है। और व्यवस्थाओं को लेकर हम यात्रियों को ये बताना चाहते हैं कि अगर गुजश्ता 6 दिनों से यात्रा निलंबित कर दी गई है और इस दौरान किसी भी यात्री को जम्मू भगवती नगर बेस कैंप से घाटी की ओर आने की इजाजत नहीं दी गई, लेकिन यह जो व्यवस्थाएं यहां रखी गई है उसमें इजाफा होता जा रहा है, उसमें कई कमी देखने को नहीं मिल रही है। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि प्रशासन के द्वारा यात्रियों के लिए तमाम तर सुविधाएं उपलब्ध रखी गई है। और इसके साथ साथ चारों ओर खासकर श्रीनगर करगिल राजमार्ग पर जगह जगह सुरक्षा कर्मी चाकू बंद रखे गए हैं ताकि तीर्थ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी प्रकार कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। जी
1: धन्यवाद रहीम रिजवान साहब।
0: धन्यवाद आपका।
1: तो श्रोताओं ये थे हमारे संवाददाता गांधरबल से रहीम रिजवान। श्री अमरनाथ जी यात्रा का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, FM पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और DTH और न्यूज ऑन AIR की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए। श्रोताओं अमरनाथ के इस विश्राम के समय अपनी सेहत का ख्याल रखना इंतहाई जरूरी है। ठंडे मौसम में शरीर को गर्म रखें और स्वच्छ पानी का ही सेवन करें। एक विनम्र निवेदन है कि अमरनाथ जी का ये सुपुत्र पृथ्वी हमारा अपना धाम है, कैंप और आसपास के इलाके में कचरा ना फैलाए, प्लास्टिक और गंदगी को कैंप में बने डस्टबिन में ही डालें। स्वच्छता और सुरक्षा यही है यात्रा की सच्ची भक्ति। आपकी यात्रा सुरक्षित, सुखद और सफल रहे।

श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी यात्रा का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, डीटीएच और न्यूज ऑन एआईआर की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए। श्रोताओं, खराब मौसम और लगातार वर्षा के चलते प्रशासन ने अमरनाथ यात्रा को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है और आप अपने टेंट या सुरक्षित स्थानों से बाहर ना निकलें, नदी नालों और पहाड़ी ढलानों से उचित दूरी बनाए रखें, अपने साथ बारिश से बचाव का सामान और जरूरी अद्वियात तैयार रखें। प्रशासन की टीमें मार्ग को सुरक्षित बनाने में निरंतर काम पर हैं। जैसे ही मौसम अनुकूल होगा, यात्रा दोबारा बहाल की जाएगी।

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं। एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज और एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। डीटीएच की आराधना सर्विस, न्यूज ऑन एआईआर की मोबाइल ऐप और प्रसार भारती के वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी हम उपस्थित हैं।

0: श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी यात्रा का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, डीटीएच और न्यूज ऑन एआईआर की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए।
1: सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी शिव भक्तों का बाबा बर्फानी जी के इस पावन पवित्र अद्भुत धाम में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आप सभी शिव भक्त बड़े ही पुण्य कर्मी हैं, जो आप सभी आज प्रातःकालीन आरती के दर्शन कर रहे हैं। MH1 चैनल के माध्यम से जो भक्तजन देश एवं विदेश में बाबा जी की इस पावन आरती की दर्शन कर रहे हैं, वह भी बड़े ही पुण्यकर्मी हैं। प्रिय बंधुओं, ये जो धाम है, ये त्याग का प्रतीक है। इस धाम में जब बाबा बर्फानी जी ने मां पार्वती जी को अमर कथा सुनाई थी, तो उससे पहले उन्होंने अपने मार्ग में अपनी सभी जो जैसे अपने गण, अपना श्रृंगार इत्यादि सभी का अपने मार्ग में ही त्याग कर दिया। इसलिए प्रिय बंधुओं, आप भी इस त्याग को अपने जीवन में धारण करें, क्योंकि ये जो त्याग है, इस त्याग से ही आप बाबा बर्फानी से जो मिल सकते हैं। इसलिए प्रिय बंधुओं, हमारे शास्त्र कहते हैं, ईर्षि गृणी ना संतुष्टा, क्रोधो नित्य शंकिता, पर भाग्योपजीवीषु खड़ एते नित्य दुखिता। जो लोग दूसरे से घृणा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, वो कभी भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए अगर आपने इस धाम में आकर कुछ सीखना है, तो यही सीखना है, हमने त्याग क्या करना है, हमने अपने अंदर की ईर्ष्या का त्याग करना है, घृणा का त्याग करना है, हमें अपने जीवन में संतोष धारण करना है। ईर्षि गृणी ना संतुष्टा, क्रोधो नित्य शंकिता, और अपने अंदर के अपने भीतर के क्रोध का त्याग करना है। जो क्रोध है, यही जो क्रोध है, ये हमारे और बाबा के बीच में जो दीवार है, इसलिए इस क्रोध का त्याग करें। ईर्षि गृणी ना संतुष्टा, क्रोधो नित्य शंकिता, और हर बात पर शंका जो है

वो भी परमात्मा के साथ मिलन में एक वादा है। इसलिए हमें हर बात पर कभी भी शंका नहीं करनी चाहिए। ईर्षि गृणीना संतुष्टा क्रोधो नित्य शंकिता परभाग्योपजीविषु। और हमें कभी भी दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें अपने जो हम जीवन में हम कर्म करते हैं उनके आधार पर ही हमें अपने जीवन का जापन करना चाहिए। प्रिय बंधुओं, इस धाम में हमें यही सीखना है, हमें ईर्ष्या करनी है तो अपनी अपने अंदर की बुराई से करनी है, घृणा करनी है तो अपने अंदर की बुराई से करनी है। हमें अगर संतोष हमारे अंदर नहीं है तो किस चीज का नहीं होना चाहिए? परमात्मा से प्रेम का हमें संतोष नहीं होना चाहिए। और घृणा करनी है तो बुराई से, क्रोध से। प्रिय बंधुओं, इन सभी बातों को अपने जीवन में धारण करते हुए आज प्रातःकालीन आरती में प्रवेश करते हैं। बोलिए।

आप सभी भक्तजन बाबा के पवित्र धाम में बैठे हैं, कहते हैं भोले बाबा स्तुतियों से भजनों से बड़े ही प्रसन्न होते हैं। तो आप सभी भक्तजन, आज भोले बाबा ने हमें अवसर दिया है, तो दोनों हाथों से ताली का वादन करते हुए, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए भोले बाबा के सुंदर भजन का ध्यान करेंगे। बोलिए।

0: धर्म की
1: जय,
0: धर्म के
1: जय हो,
0: धर्म का
1: नाश हो,
0: प्राणियों में
1: सद्भावना हो,
0: विश्व का
1: कल्याण हो,
0: गौ माता की
1: जय हो,
0: मात पिता की
1: जय हो,
0: गुरु जनों की
1: जय हो,
0: सभी संतों की
1: जय हो,
0: सभी भक्तों की
1: जय हो,
0: सत्य सनातन धर्म की
1: जय हो,
0: आज के आनंद की
1: जय हो,
0: भारत माता की
1: जय हो,
0: शंकर भगवान की
1: जय हो,
0: शंकर भगवान के परिवार की
1: जय हो,
0: शंकर भगवान के गणों की
1: जय हो,
0: शंकर भगवान के भक्तों की
1: जय हो,
0: हमारे नाथ।
2: शाम के 6 बज रहे हैं, आप अमरनाथ यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण सुन रहे थे। FM बालतल और FM पहलगाम, न्यूज ऑन एयर की मोबाइल ऐप, आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए। इस विशेष प्रसारण में हमारे साथ थे हमारे सहायक इंजीनियर समीर अहमद भट्ट, और उनके साथ हैं एजाज अहमद गुरकू और मोहम्मद सलीम, और मैं हूं आपकी उद्घोषक सबरीना महराज, और इस प्रसारण के प्रस्तुतकर्ता श्री वसीम फारूक। इसी के साथ आज की ये सभा यही समाप्त होती है। आपकी यात्रा सफल रहे, दीजिए इजाजत, शुभ यात्रा, जय हिंद।

मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला।

0: हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन।
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

अब प्रसंग कुछ इस प्रकार से है। उधर अयोध्या से बारात प्रस्थान के पश्चात महिलाएं स्वांग रचा कर विभिन्न भेष धारण कर नक्टा प्रस्तुत करती हैं।

जनकपुर से चारों बेटे बहुओं की बारात लौटने के पश्चात परिछन करने के लिए तीनों रानियां पारंपरिक रीति से गीत गाकर हंसी खुशी परिछन करती हैं।

इधर मंथरा को खुशी रास न आई और कैकेयी के कान में फुसफुसा कर भवन में षड्यंत्र रचती हैं और कैकेयी राजा दशरथ जी से लिए हुए तीन वचन मांग लेती हैं, जिस कारण अयोध्या में गाज गिर जाती है और राजा दशरथ विलाप करते हुए कुछ इस प्रकार कह उठते हैं।

उधर प्रजा में भयंकर प्रतिक्रिया होती है। लोग आपस में कानाफूसी करने लगते हैं। कुछ स्त्रियां अपनी बात साधारण जन के बीच रखती हैं।

दूसरी कड़ी में आप धनुर्भंग तक का प्रसंग सुन चुके हैं। आज प्रस्तुत है श्री विश्व प्रकाश दीक्षित पटुक की लिखी हुई तीसरी कड़ी

0: रामचंद्र जी के रूप गुण शील और स्वभाव को देख सुनकर राजा दशरथ आनंदित हुए। सबके हृदय में यही अभिलाषा उत्पन्न हुई और सब शिवजी से यही प्रार्थना करने लगे कि राजा दशरथ अपने रहते श्री रामचंद्र को युवराज का पद दे दें। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा। राजसभा में बैठे हुए राजा दशरथ ने स्वभावतया हाथ में दर्पण लिया, उसमें अपना मुख देखा और शीश का मुकुट सीधा किया। राजा ने देखा श्रवण समीप भये सित के सा, उन्हें लगा मानो बुढ़ापा उपदेश कर कह रहा है।
1: नृप, जब राज राम कह देहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु।
0: राजा दशरथ ने इस पर विचार कर शुभ दिन और सुंदर समय पाकर गुरु वशिष्ठ से निवेदन किया।
1: मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक, सेवक मंत्री नगर निवासी शत्रु मित्र उदासीन सब कोई राम को मेरी ही तरह प्रेम करते हैं। आपके ही समान परिवार सहित विप्रगण भी उन्हें स्नेह की दृष्टि से देखते हैं। आपके पवित्र चरणों की धूली की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया है। अब अभिलाष एक मन मोरे, पूज्य ही नाथ अनुग्रह तोरे।
2: राजन आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है।
1: नाथ, राम करिय ही जुब राजु, आप कृपा कर आज्ञा दें तो तैयारी की जाए। मैं कहता हूं कि मेरे जीते जी यह आनंद उत्सव हो जाए, जिसमें सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु प्रसाद शिव सबई निवाही, यह लालसा एक मन माही। इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर कोई चिंता नहीं, शरीर रहे या चला जाए।
2: सुनु नृप, जासु विमुख पछताही, जासु भजन बिनु जरने न जाही। वही सब लोगों के स्वामी श्री राम आपके पुत्र रूप में है, इसलिए देगी विलंबु न करिए नृप। साजी सबुई समाज, सुदिन सुमंगल तबही, जब राम हो ही जुवराज।
0: दशरथ जी गुरु वशिष्ठ की अनुमति पाकर प्रसन्न चित्त महलों में आए। सबको एकत्र कर मंत्री सुमंत से कहा, जो पांच ही मत लागे नीका, करहु हरख ही राम ही टीका। मुनिवर की आज्ञा के अनुसार राज्याभिषेक का सब प्रबंध शीघ्र किया जाए। मुनिवर ने प्रसन्नता पूर्वक मृदुवाणी में संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल, आवश्यक औषध मूल फूल फल और पत्रादि अनेक मांगलिक वस्तुओं के नाम गिनवाकर बताए। चंवर मृग चर्म बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्य जातियों की ऊनी और रेशमी कपड़े, नाना प्रकार के रत्न तथा बहुत सी मांगलिक वस्तुएं जो जगत में राज्याभिषेक के योग्य होती हैं, सबको मंगाने की आज्ञा दी। मुनिवर ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर कहा,
2: नगर में बहुत से मंडप सजाओ, फलों समेत आम सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों के चारों ओर रोप दो, सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुरवाओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी गुरु और कुल देवता की पूजा करो और भूदेवों की सब प्रकार से सेवा

0: करो। ध्वजा पताका तोरण कलश घोड़े रथ और हाथी सबको सजाओ।
1: मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ के वचनों को शिरोधारी करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। मुनिवर ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी उसने वो काम इतनी शीघ्रता से कर डाला मानो पहले से ही कर रखा था। राम के राज्याभिषेक की सब तैयारियां होने लगी। अयोध्या में बधावे बजने लगे।

0: एही अवसर मंगल परम सुनि रहसेउ रनिवासु शोभत लख विधु बढ़त जनु बारिधि बीच बिलासु। रनिवास में भी ये मंगल समाचार पहुंचा दिया गया। सभी रानियां मंगल कलश सजाने लगी। कौशल्या ने नाना वित्तान दिया। वे प्रार्थना करने लगी, जे ही विधि होए राम कल्याणु देहु दया करी सो बरदानु। चारों ओर आनंदमय मंगल गान होने लगे। राम राज अभिषेक सुन ही हरखे नर नारी लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचार। राजा दशरथ की इच्छानुसार मुनि वशिष्ठ श्री राम को उपदेश देने के लिए उनके महल में गए। गुरु जी का आगमन सुनते ही श्री राम ने द्वार पर आकर गुरु वशिष्ठ के चरणों में मस्तक नवाया। आदर पूर्वक अर्घ्य देकर उन्हें भवन में लाए। विधि पूर्वक पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता सहित उनके चरणों का स्पर्श करके बोले,
1: सेवक सदन स्वामी आगमनु मंगल मूल अमंगल दमनु। नाथ उचित तो यह था कि प्रेम पूर्वक इस दास को ही बुला भेजते। नीति भी यही कहती है, किंतु आपने बड़प्पन त्याग स्वयं यहां पधारकर मुझे जो स्नेह दिया उससे आज ये घर पवित्र हो गया। आयुष होई सो करो गोसाई सेवक लहे स्वामी सेवकाई।
2: भला राम ऐसा क्यों न कहेंगे, आप सूर्यवंश के भूषण जो हैं। रामभद्र भूप सजेउ अभिषेक समाजु चाहत देन तुमही जुवराजु। राम करहु सब संयम आजु जौ विधि कुशल निबाही काजु।
1: जैसी गुरुदेव की आज्ञा, मैं आपके आशीर्वाद का अभिलाषी हूं। गुरुदेव ये क्या कहकर चले गए, हम सब भाई एक ही साथ जन्मे। खाना सोना लड़कपन के खेल कूद कंछेदन यज्ञोपवीत और विवाह आदि उत्सव सब साथ साथ ही हुआ, लेकिन इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े का ही हो।
0: इधर तो नरनारी राज्याभिषेक के मुहूर्त की प्रतीक्षा करने लगे। उधर बिघन मना वहीं देव को चाली, क्योंकि तिन ही सुहायन अबध बधावा चोर ही चांदनी रात न भावा। सरस्वती को बुलाकर देवताओं ने विनय की, हे माता हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे राम राज्य को त्याग कर बन को जाएं और देवताओं का कार्य सिद्ध हो। देवताओं की बात सुनकर सरस्वती पछताने लगी, किंतु देवताओं की बार बार विनय सुनकर उनकी बुद्धि पर पश्चाताप करती वे वहां से चल दी। ऊंच निवास नीच कर तूती देख न सकहीं पराई विभूति। किसी प्रकार वे अयोध्या आई और नाम मंथरा मंदमति चेरी केकई केरी अजस पिटारी ताही कर गई गिरा मति फेरी। सरस्वती देवलोक को वापस चली गई। तदनंतर मंथरा नगर की सजावट देखकर लोगों से उत्साह का कारण पूछती हुई श्री राम के राज तिलक की बात सुनकर हृदय में जल उठी। वो बुद्धिहीन दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार ये काम रात ही रात में बिगड़ सकता है। जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छत्ता लगा देखकर घात लगाती है, वैसे ही श्री राम के राज्याभिषेक के पुण्य कार्य को बिगाड़ने की चालें सोचती हुई मंथरा भरत मां तो पह गई बिलखानी।
3: अरे मंथरा तू उदास क्यों है? गालु बड़ तोरे दीन लखन सिख अस मन मोरे। क्यों नहीं? राम, राजा, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न कुशल से तो हैं।
4: कत सिख दे हमई को माई, गालु करम कहीं करबलु पाई। राम ही छाड़ कुशल के ही आजू, जही जनेसु देई चुब राजू। कौशल्या के तो विधाता बहुत ही अनुकूल हुए हैं, इसीलिए वे गर्भ में फूली नहीं समाती। मुझसे क्या पूछती हो? देखहु कसना जाई सब शोभा, जो अवलोकी मोर मनु शोभा। पूत विदेश न सोच तुम्हारे, जानती हो बस नाहु हमारे। रानी तुम्हें तो तोषक तकियों से सजे पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट चतुराई तुम्हें दिखाई नहीं देती।
3: बस बस चुप रह, पुनिया से कब हूँ कहा से घर फोरी, तब धरी जीभ कढ़ावा तोरी।
4: हमें क्या, हम तो तुम्हारी भलाई के लिए कहते हैं।
3: प्रिय वादिनी सिख दीना हूँ तो ही, सपने हूँ तो पर कोपु न मोही। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन राम का राज्य तिलक होगा। सूर्यवंश की तो ये रीति है कि बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक बने। राम तिलक को जो साचो हूँ काली, देऊ मांगू मन भावत आली। राम को सहज स्वभाव से कौशल्या के समान ही सब माताएं प्यारी हैं। मो पर गरही स्नेहु बिसेखी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। अगर विधाता कृपा करके मुझे दोबारा मानव देह दें, तो ये भी दें कि राम पुत्र और सीता वधु हूं। राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। उनके राजतिलक की बात सुनकर तुझे क्षोभ कैसा? तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच बता कि क्या बात है, हर्ष के समय विषाद करने का क्या कारण है?
4: एक ही बार आज सब पूछी, अब कुछ कह जीव करी तुझी। फोर जोक कपारू अभागा, भले हो कहते दुख रव रही लागा। अरे माई तुम्हें तो वो ही प्यारे लगते हैं जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं, मैं तो तुम्हें कड़वी लगती हूँ। हम हूँ कही बाब ठकुर सुहाती, नहीं तो मौन रहू दिन राती। विधाता ने कुरू बनाकर मुझे परवश कर दिया, दूसरे को क्या दोष देना, जो बोया सो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ। कौन पुहो हमें कहानी, चेर छाड़ अब होप की रानी। जा रही जोग स्वभाव हमारा, अनभल देख न जाई तुम्हारा। इसीलिए कुछ बात चलाई थी, छमही देव बड़े चूक हमारी।
3: अरे तू बुरा मान गई, तू तो मेरे हित की ही कहती है, बता तो भला क्या बात है?
4: तुम पूछो मैं कहत डरा हूँ, थरे हूँ मोर घर फोरी ना हो। पर चलो मैं तो आपको अपना सब कुछ मानती हूँ, इसीलिए कहती हूँ। रानी तुमने जो कहा है कि तुम्हें सीता और राम प्यारे हैं और राम को तुम प्यारी हो, सो ठीक ही है, लेकिन राहा प्रथम अब ते दिन बीते, समऊ फिरे रूप होई प्रीते। देखो सूरज कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूरज कमल को जलाकर भस्म कर देता है।
3: अरे तू कहना क्या चाहती है मंथरा, साफ साफ कह।
4: सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है,
3: क्या
4: उपाय की पाड़ लगाकर उसकी रक्षा करो। तुम्हें ही न सोच सुहाग बल, निज फस जान न हुलाओ। लेकिन रानी मन मलीन मुंह मीठ नृप, राउर सरल स्वभाव।
3: मंथरा
4: राम की माता बड़ी चतुर और गंभीर है, उसकी थाक कोई नहीं पा सकता। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली, राजा ने भरत को जो ननियाल भेज दिया उसमें आप बस राम की माता की ही सलाह समझिए। कौशल्या समझती है कि और सब सौतें तो मेरी अच्छी सेवा करती हैं, एक भरत की माँ ही ऐसी है जो पति के बल पर गर्व करती है। इसीलिए माई कौशल्या को तुम बहुत ही
5: चुभ रही हो, वो कपट करने में बड़ी चतुर है, इसीलिए उसके हृदय का भाव आसानी से जाना नहीं जाता।
3: लेकिन राजा,
5: हाँ राजा ही तुम पर प्रेम अभिषेकी, सबती स्वभाव सकई नहीं देखी, इसीलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने वश में करके भरत के यहाँ ना होने पर राम के राज तिलक के लिए लगन पक्का करा लिया।
3: लेकिन राम का राज तिलक हो,
5: राम का राज तिलक हो, ये तो रघुकुल के अनुकूल ही है, ये बात सबको सुहाती है और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है। लेकिन मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है।
3: आगे की क्या बात मंथरा?
5: भगवान करे उसका उल्टा फल कौशल्या को ही मिले।
3: मंथरा तुझे मेरी सौगंध, तू कुछ छिपा मत, सब सच सच बता, तुझसे बढ़कर मेरा हितकारी भला और कौन हो सकता है?
5: कहा पूछो, तुम अबहू न जाना, निज हित अनहित पशु पहचाना, पूरा पखवाड़ा बीत गया नगर को सजते और तुमने खबर पाई है आज, वो भी मुझसे। मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है, अगर मैं अपनी ओर से बना के झूठ कहती हूँ तो भगवान मुझे दंड देगा।
3: नहीं मंथरा, मैं तुझ पर भरोसा रखती हूँ, तू झूठ क्यों कहने लगी?
5: अगर कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया, मेरी बात को पत्थर की लकीर समझना। रेख खचाई कहूं भल भाखी, भामनी भयहू दूध कई माखी। अगर अपने बेटे भरत सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा नहीं। कत्रु ने विनता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी, भरत जेल की हवा खाएंगे और लक्ष्मण राम के नायब होंगे।
3: मंथरा
5: रानी धीरज धरिए, घबराने से काम नहीं चलेगा, साहस के साथ कोई उपाय सोचिए।
3: मंथरा तू ठीक कहती है, दाहिनी आंख नित भर गई मोरी, मैं रोज रात को बुरे सपने देखती हूँ, लेकिन अपने अज्ञान के कारण तुझसे कहती नहीं। काह करो सखी, सूत सुभाओ, दाहिन बाम न जानो काओ, जहां तक मेरा वश चला मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया, न जाने दैव ने मुझे एक साथ ही ये कठिन दुख किस पाप के बदले दिया।
6: नई हर जन्म भरब बरु जाई, जियत न करबी सवति

0: सेवकाई, शत्रु के वश में रहकर जीने से मर जाना अच्छा है।
1: रानी अस कस कहूं माने मनूना, सुख सुहाग तुम कहूं दिन दूना, पर कह देती हूं जे ही राउर अति अनभलता का, सोई पाइए यहू फलु परिपाका।
0: स्वामिनी मैंने जब से ये कुमत सुना है तब से मुझे न दिन में चैन है न रात को, न भूख लगती है न नींद ही आती है।
1: मंथरा
0: तब
1: तुम चिंता मत करो रानी, मैंने ज्योतिषियों से पूछा था, उन्होंने रेखाएं खींचकर हिसाब लगाकर कहा भरत भुआल हुई ये साची।
0: अच्छा रानी अगर तुम कहो तो मैं एक उपाय बताऊं।
1: हाँ।
0: राजा तुम्हारी सेवा के वश में तो हैं,
1: परम कूप तो वचन पर सकूं पूत पति त्याग। जब तू मेरा ये महान कष्ट देखकर कह रही है तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों न करूंगी, तू कह तो सकी।
0: स्वामिनी सुध आई है कि नहीं, तुमने मुझसे एक कथा कही थी उसके अनुसार दुई वरदान भूप संथाती, मांगहूं आज चुड़ा पहुंचाती। पुत्र को राज और राम को बनवास दो और सौत का सारा आनंद तुम ले लो।
1: सखी मंथरा
0: एक बात का ध्यान रखना, जल्दी मत करना, भूपति राम शपथ जब करी तब मांगहूं यही वचन न डरे। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा, मेरा कहा मानो, सीधे गोप भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना, सहसा ही राजा की बातों में मत आ जाना।
1: सखी तू मुझे बहुत प्रिय है, प्राणों से भी प्रिय, तू बहुत ही बुद्धिमान है, संसार में मेरा तेरे समान हितकारी दूसरा नहीं है, तू मुझ बही जाती हुई के लिए सहारा हुई है। जो विधि पुरब मनोरथ काली, करो तो ही चख पूतरियाली।
2: इस प्रकार दासी को अनेक प्रकार का आदर सम्मान देकर कोप भवन गवनी कहकी

अंततो गत्वा सांझ समय सानंद नृप गयउ के कई गे हैं। लेकिन कोप भवन सुनी सकुचे उराऊ, डर के मारे राजा के पैर आगे नहीं उठते। कैसी विडंबना है, स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर निवास करता है, और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं, वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। सभय नरेश प्रिया पहिं गयउ, देखि दशा दुख दारुण भयउ। राजा ने देखा कैकेयी जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए, शरीर के सभी आभूषण उतार कर फेंक दिए हैं। श्रोताओं,

0: उस दुर्बुद्धि कैकेयी को यह कुवेश कैसा लग रहा था, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रहा हो। किसी प्रकार राजा कैकेयी के पास गए और कोमल वाणी में बोले,
1: प्राण प्रिय, तुम किस लिए रूठी हो? हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बहनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो बता। अनहित तोर प्रिया केई कीन्हा, केई दुई सिर केई जम चैलीन्हा, कहू केई रंग कही करौ नरेसु, कहू केई नृपही निकासो देसु। प्रिय, देवता भी अगर तुम्हारा शत्रु होगा तो मैं उसे भी मार सकता हूँ। कीड़े मकौड़ों के समान वे सारे नरनारी तो चीज ही क्या है। सुंदरी, तुम तो मेरा स्वभाव जानती हो, मेरा मन तो सदा तुम्हारे मुखचंद्र का चकोर है। प्रिय, मेरी भुजा, कुटुंबी, सर्वस्व, पुत्र, यहां तक कि मेरे प्राण भी, ये सब तुम्हारे अधीन है। मैं सच कहता हूं, मुझे राम की सौगंध है, मैं तुमसे कुछ भी कपट करके नहीं कह रहा। तुम हंसो और प्रसन्नता के साथ मन चाहा मांग लो, अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजाओ। प्रिय, अवसर को अवसर तो मन में विचारो। भामिनी, भयउ तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। मैं कल ही राम को युवराज पर दे रहा हूं, सुनै ने तुम मंगल साज सजा लो।
2: मांगू मांगू पै कहो पिए, कबहु न देहु न लेहु। आपने दो वरदान देने को कहा था, मुझे तो उनके मिलने में भी संदेह है।
1: अब मैं तुम्हारा मर्म समझा। मान करना तुम्हें परम प्रिय है ना? तुमने उन वरों को धरोहर के रूप में रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं। मेरा भूल जाने का स्वभाव तुम जानती ही हो, मुझे भी याद नहीं रहा। अब तुम झूठे हो, हम ही दोष जनि देहु, दुई के चार मांग मकुलेहु। तुम जानती ही हो, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहु बरु बचन न जाई। और नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम हो ही कि कोटिक गुंजा। प्रिय, एक तो सत्य स्वयं ही सारे उत्तम पुण्यों का मूल है, उस पर मेरे मुंह से राम की शपथ निकल पड़ी है।
2: तो सुनहु प्राण प्रिय, भावत जी का देहु एक बर भरत ही टीका।
1: अच्छा
2: नाथ, दूसरा वर मैं हाथ जोड़ कर मांगती हूँ।
1: हाँ।
2: मेरा मनोरथ पूरा कीजिए।
1: हाँ।
2: तापस वेश विशेष उदासी, चौदह बरिस राम बनवासी।
1: मोर मनोरथ सुंदर फूला, भरत करिणी जिमि हाथे समूल, अब सुझार तीन सी अचल विपत्ति कह नहीं। आह, क्या होने को था और क्या हो गया।
2: भरत को राउर पूत न हो ही, आने हूँ मोल बिसाही की मोही। क्या मैं आपकी विवाहिता नहीं हूँ जो मेरी बातें आपको बाण की तरह लगी? अगर आपको ऐसा ही करना था तो पहले ही सोच समझ कर बात करते। उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो ना ही कर दीजिए। आप रघुकुल में सत्य प्रतिज्ञा नाम से प्रसिद्ध हैं। आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही ना दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश लीजिए। सत्य सराही कहे बरु देना, जाने हूँ ले ही मांगी चबेना। राजा शिवी दधीची और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन को निभाया।
1: इससे कैसी कठोर परिस्थिति पैदा कर दी।

0: कि उससे बच निकलना ही मेरे लिए कठिन हो गया। क्या सचमुच ही ये मेरे प्राण लेकर रहेगी? ये विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसे बुरे वचन कैसे कह रही हो? मोरे भरत राम दुई आखी, सत्य कहूं करी संकरु साथी। मैं सवेरा होते ही दूत भेजूंगा, भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। शुभ मुहूर्त निकालकर सब तैयारी करके घोषणा पूर्वक मैं भरत को राज्य दे दूंगा। राम को राज्य का लोभ नहीं है, भरत को तो वे बहुत प्रेम करते हैं। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था, इसलिए बड़े को राज तिलक देने जा रहा था। राम सपत सत कहु सुभाव, राम मातु कछु कहे उन्हें काहू। मैं सब कीनी तो ही बिन पूछे, ते ही ते परे हो मनोरथ छूछे। प्रिय अब क्रोध छोड़ दो और मंगल साज सजा लो, कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात का मुझे दुख है कि तुमने दूसरा वरदान असमंजस भरा मांगा है। अज हृदय जरत ते आज रिस परिहास इस साचे हु साचा। क्रोध को त्याग कर राम का अपराध बताओ। हर कोई तो कहता है कि राम बड़े साधु हैं। तुम स्वयं भी राम की सराहना किया करती थी और उन पर प्रेम भी रखती थी। अब तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे संदेह हो गया है कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो नहीं थे। भला जिसका स्वभाव शत्रु के भी अनुकूल है, वो माता के प्रतिकूल आचरण कैसे करेगा? प्रिय हंसो और क्रोध छोड़कर उचित अनुचित का विचार करके वर मांगो, जिससे अब मैं नेत्र भरकर भरत का राज्याभिषेक देख सकूं। जिए मीन बरुबारी बिहीना, मनी बिनु फनिक जिए दुख दीना। कहूं सुभाव न छलु मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। समझी देख जिए प्रिया प्रवीणा, जीवन राम दरस आसीना।
1: आप करोड़ों उपाय क्यों न करें, यहाँ आपकी माया नहीं चलेगी। या तो मैंने जो मांगा है वो दीजिए, नहीं तो ना ही करके अपयश लीजिए। मोहिना बहुत प्रपंच सुहाही, राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भली सब पहचाने। कौसल्या ने जैसा भी भला चाहा है, मैं भी उसे वैसा ही फल दूंगी, वो भी जीवन भर याद रखेगी। होत प्रातु मुनिवेश धरी, जो न राम बन जाहि मोर मरन, राउर अजस नृप समझिए मन मार।
0: हा राम, हा राम, राम।

क्रोध की नदी की तरह उफनती हुई कैकेयी को देखकर राजा दशरथ ने समझ लिया कि बात सच्ची है और अब तियमिस मींच उसी पर नाचे।

0: अंततो गत्वा राजा ने कैकेयी के चरण पकड़कर उससे कहा,
1: कनि दिन कर कुल होसी कुठारी, मांगु मात अभी देव तोही, राम बिरह जनि मार असी मोही, राखु राम कहू जही तही भाती, नाही ते जरही जन्म भरी छाती।
2: अगर अंत में आपको ऐसा ही करना था तो मांग मांग तुम के ही बल कहू, दुई की होई एक समय फुआला, हसब छछाई फुलाऊ बगाला, दानी भी कहाना और कंजूसी भी करना, क्या ये संभव है कि लड़ाई में बहादुरी भी दिखाएं और कहीं चोट भी न लगे? अब या तो अपने वचन छोड़ दीजिए या फिर धीरज रखिए, इस प्रकार असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं।
1: तू जो चाहे कहे, तेरा कुछ भी दोष नहीं है, मेरा काल तुझे पिशाच होकर लगा, वही तुझसे ये सब कहला रहा है। भरत तो फूल कर भी राजपद नहीं चाहता, तेरी कुबुद्धि में होनहार बसी है, ये सब मेरे पापों का ही फल है कि कुसमय में विधाता विपरीत हो गया। मगर याद रखना, ये अयोध्या जिसे तू आज उजाड़ रही है फिर फली प्रकार बसेगी, समस्त गुणों के धाम राम की प्रभुता भी होगी, सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में राम की बढ़ाई होगी, केवल केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, किसी भी तरह नहीं जाएगा। अब तो ही नीक लाग करू सोई, लोचनोट बैठू मुखोई, मैं तेरे आगे हौथ जोड़ता हूँ, जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मुझसे कुछ न कहना, अरिया भागनी अंत में तू पछताएगी कि जो तू ताहत के लिए गाय को मार रही है। भगवान करे सवेरा ही ना हो, ये रात इसी तरह बनी रहे, भगवान सबको ऐसी सुबुद्धि दे कि कोई भी राम से इस बात की चर्चा न करे। हे रघुकुल के गुरु सूर्य भगवान, आप उदित न हो, अयोध्या को व्याकुल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी।

हनुमान जी लंका में प्रवेश कर विभीषण से परिचय करते हुए माता सीता का दर्शन कर लंका का दहन करते हुए श्री राम को समस्त जानकारियां प्रदान करते हैं। श्री राम, लखन, सुग्रीव, हनुमान, जामवंत, अंगद और समस्त वानरी सेना समुद्र में सेतु बांधकर लंका में प्रवेश करते हैं। श्री राम के शांतिपूर्ण ढंग से सीता को ससम्मान लौटाने के आग्रह को रावण के ठुकराने से युद्ध छिड़ गया। अनेकों राक्षसों का वध करते हुए लक्ष्मण जी मेघनाद से युद्ध करने लगे, परंतु मेघनाद ने शक्तिबाण का प्रयोग कर लखनलाल को मूर्छित कर दिया। समस्त वानरी सेना शोकाकुल हो उठी। श्री राम विलाप करते हुए प्यारे लखनलाल को जगाने का प्रयास करते हैं।

अपने राम

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके आज अयोध्या पधार रहे। अयोध्या के सारे निवासी एकटक भगवान राम की राह देख रहे हैं। वो अखियां जो सोई नहीं जब से भगवान राम अयोध्या छोड़ के वनवास को गए, आज उन्हीं आंखों को विश्राम मिलेगा। भरत के हृदय में बड़ा आनंद है कि आज भैया आएंगे, दर्शन देंगे, इस नगरी को फिर से अपनाएंगे और इस सिंहासन का कार्यभार फिर से संभाल लेंगे। मां कौशल्या के हृदय में उमंगे उठ रही हैं कि आज मेरे राम आ रहे हैं। बस यही भाव इस भजन में है, आइए इस भजन का आनंद लेते हैं।

एक सच्चा हरि भक्त जीवन भर ईश्वर दर्शन की आस लिए, हरि मिलन की प्यास लिए पल पल तड़पता है, तरसता है कि उस पर भी हरि कृपा कर दे। भक्तों का तारनहार, जगत का पालनहार हर युग में अवतार लेता है, कभी अवधपति राम तो कभी गोकुल का श्याम बनकर। बाल कृष्ण की एक झलक पाने के लिए तुलसी, नानक, सूरदास, मीराबाई, एकनाथ, तुकाराम और नरसिंह मेहता ने आराधना की, तपस्या की और वो सफल हुए। हरि दर्शन का प्यासा भक्त ईश्वर से कई सवाल करता है कि उसमें क्या कमी है, उसकी

सरयू नदी के तट पर बसी सुंदर अवधपुरी रामलला की जन्मभूमि। दशरथ नंदन राम जी ने इसी नगरी में अपनी मानव सुलभ बाल लीलाएं की। श्री राम दशानन पर विजय प्राप्त कर जब अयोध्या नगरी पुनः पधारे तो ये जानकर अयोध्या वासियों के आनंद की सीमा न रही कि तारनहार श्री राम अब सदा के लिए यही निवास करेंगे। भक्त जनों और संत जनों की प्रार्थनाओं से रामलला के सर से हर प्रकार की अलाबला टल गई।